ओंकार श्री वाहिगुरु जी की फतेह। पातशाही दसवीं कबे उबाच बेनती चौपाई। हमरी करो हाथ दय रक्षा, पूरन होए चित की इच्छा। तब चरणन मन रहे हमारा, अपना जान करो प्रतपारा। हमरे दुष्ट सबै तुम कावो, आप हाथ दय मोहे बचावो। सुखी बसै मोरो परिवारा, सेवक सिख सबै करतारा। मोर अच्छा निज करदै करियै, सब बैरन को आज संगरियै। पूरन होए हमारी आशा, तोर भजन की रहै प्यासा। तुम्हें शाड कोई अवर ना त्याऊं, जो बर चाहूं सो तुम ते पाऊं। सेवक सिख हमारे तारिया है, चुन चुन सत्र हमारे मारिया है। आप हाथ दय मुझे उबरिया है, मरण काल का त्रास निवरिया है। पूजो सदा हमारे पच्छा, श्री अस तुझ जो करे हो रक्षा। राख ले हो मोहे राखन हारे, साहेब संत सहाय प्यारे। दीन बंद दुष्टन के हंता, तुम हो पूरी चतुर दस कंता। काल पाए ब्रह्मा बपतरा, काल पाए शिवजू अवतरा। काल पाए कर विष्ण प्रकाशा, सकल काल का किया तमाशा। जवन काल जोगी शिव कियो, वेद राज ब्रह्मा जू थियो। जवन काल सब लोक सुवारा, नमस्कार है ताहे हमारा। जवन काल सब जगत बनायो, देव दायत जक्षन उपजायो। आद अंत एक अवतारा, सोई गुरु समझियो हमारा। नमस्कार तिस ही को हमारी, सकल प्रजा जिन आप सुवारी। सेवकन को सैव गुण सुख दियो, सत्रन को पालमो भद कियो। घट घट के अंतर की जानत, भले बुरे की पीर पशानत। चीटी ते कुंचर असथूला, सब पर कृपा दृष्ट कर फूला। संतन दुख पाए ते दुखी, सुख पाए साधन के सुखी। एक एक की पीर पशाना, घट घट के पट पट की जाना। जब उद करख करा कर तारा, प्रजा करत तब देह अपारा। जब अकर्ख करत हो कब हूँ, तुम मैं मिलत देह तार सब हूँ। जेते बदन श्रेष्ठ सब तारै, आप अपनी बूझ उचारै। तुम सब ही ते रहत निरालम, जानत बेद भेद अर आलम। निरंकार निर्भकार निरलंब, आद अनिल अनाद असंभव। ताका मूड उचारत भेदा, जाको पेव न पावत बेदा। ताको कर पाहन अनुमानत, महामूड काश भेद न जानत। महादेव को कहत सदा सेव, निरंकार का चीनत नह पेवो। आप अपने बुद्ध है जेती, बरनत भिन्न भिन्न तुह तेती। तुमरा लखा न जाए पसारा, केह बिद सजा प्रथम संसारा। एकै रूप अनूप सरूपा, रंक पयो राव कही पूपा। अंडज जेरज से तज कीनी, उत भुज खान बहुर राच दीनी। कहूं फूल राजा हुए बैठा, कहूं सिमट पयो संकर इकैठा। सगरी सृष्ट दिखाए अचंभव, आद जुगाद स्वरूप स्वयंभव। अब रक्षा मेरी तुम करो, सिख उबार असिख संगरो। दुष्ट जिते उठवत उत्पाता, सकल मलेश करो रण खाता। जे अस तुझ तब सरनी परे, तिनके दुष्ट दुखित हवै मरे। पुरख जवन पग परे तिहारे, तिनके तुम संकट सब टारे। जो काल को एक बार त्या है, ताके काल निकट नह है। रक्षा होए ताहे सब काला, दुष्ट अरिष्ट तरें तात काला। कृपा दृष्ट तन जाहे निहर हो, ताके पाप तनक मोहरे हो। रिद सिद कर्मो सब होई, दुष्ट शाह श्वाय सकै ना कोई। एक बार जिन तुम्हें संभारा, काल फास ते ताहे उबारा। जिन नर नाम तिहारो कहा, दारिद दुष्ट दोख ते रहा।
ਖੜਗ ਕੇਤ ਮੈਂ ਸਰਣ ਤਿਹਾਰੀ, ਆਪ ਹਾਥ ਦੈ ਲਿਹੋ ਉਬਾਰੀ, ਸਰਬ ਠੌਰ ਮੋਹੋ ਸਹਾਈ, ਦੁਸ਼ਟ ਦੋਖ ਤੇ ਲਿਹੋ ਬਚਾਈ। ਸਵਈਆ ਪਾਏ ਗਹੇ ਜਬ ਤੇ ਤੁਮਰੇ, ਤਬ ਤੇ ਕੋ ਆਖ ਤਰੇ ਨਹੀਂ ਆਨਿਓ, ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਪੁਰਾਨ ਪੁਰਾਨ, ਅਨੇਕ ਕਹੇ ਮਤ ਏਕ ਨਾ ਮਾਨਿਓ, ਸਿਮਰਤ ਸ਼ਾਸਤਰ ਬੇਦ ਸਭੈ ਬਹੁ ਭੇਦ, ਕਹੇ ਹਮ ਏਕ ਨਾ ਜਾਨਿਓ, ਸ੍ਰੀ ਅਸਪਾਨ ਕਿਰਪਾ ਤੁਮਰੀ ਕਰ, ਮੈਂ ਨਾ ਕਹਿਓ ਸਭ ਤੋਹੇ ਬਖਾਨਿਓ। ਦੋਹਰਾ

राम कली महला तीजा आनंद एक ओंकार सतगुरु प्रसाद आनंद पया मेरी माए सतगुरु मैं पाया सतगुर ता पाया सहज सेती मन वजिया वादाइया राग रतन परवार परियां शब्द गावण आईया शब्दो ता गावह हरि केरा मन जिनी वसाया कह नानक आनंद हुआ सतगुरु मैं पाया ए मन मेरिया तू सदा रहो हर नाले हर नाल रहो तू मन मेरे दुख सब विसारणा अंगीकार ओह करे तेरा कारज सब सवारणा सबना गला समरथ स्वामी सो क्यों मनो विसारे कहे नानक मन मेरे सदा रहो हर नाले साचे साहेबा क्या नाही कर तेरा घर ता तेरा सब किश है जिस देह सो पावे सदा सिफत सलाह तेरी नाम मन वसावे नाम जिनकै मन वसिया वाजे शब्द कनेरे कहे नानक सच्चे साहिब क्या नाही कर तेरा साचा नाम मेरा आधारु साच नाम आधार मेरा जिन भुखा सब गवाइया कर सांत सुख मन आए वसिया जिन इच्छा सब पुजाइया सदा कुर्बान कीता गुरु विटहो जिस दिया एह वडियाइया कहे नानक सुनो संतो शब्द तरहो प्यारो साचा नाम मेरा आधारो वाजे पंच शब्द तित घर सुभागै शब्द वाजे कला जित कर तारिया पंच दूत तुद वस कीते काल कंटुक मारिया तुर कर्म पाया तुद जिन कौ से नाम हर कै लागे कहे नानक तय सुख हुआ तित घर अनहद वाजे आनंद सुनो वड भागी हो सगल मनोरथ पूरे पार ब्रह्म प्रभ पाया उतरे सगल विसूरे दुख रोग संताप उतरे सुनी सच्ची बाणी संत साजन भये सर से पूरे गुर ते जानी सुनते पुनीत कहते पवित सतगुर रहया।

भयन साकत निंदक दुष्ट खिन माहि बिदारियन। किस साहिब की टेक नानक मन माहे, जिस सिमरत सुख होए सगले दुख जाहे। किस साहिब की टेक नानक मन माहे, जिस सिमरत सुख होए सगले दुख जाहे। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की।

सगन समग्री तुमरा सूतर तुमते हो सो आज्ञा तुमरे गत मित तुम्हें नानक दास सदा कुर्बानी बोलना जी सतनाम श्री वाहेगुरु एक ओंकार वाहेगुरु जी की फतेह श्री भगवती जी सहाय वाह श्री भगवती जी की पातशाही दसवीं प्रथम भगवती सिमर कै गुरु नानक लहें ते आए फिर अंगद गुर ते अमरदास रामदासे होई सहाय अर्जुन हर गोबिंद नो सिमराओ श्री हर राय श्री हर कृष्ण ध्याइए जिस जिठे शब्द हो जाए देख बहादुर सिमरिया घर नौन ते आवे ताए सब थाई हो सहाय दसवें पातशाह साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह सह महाराज जी सब थाई हो सहाय दसां पातशाहियां दी जोत श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे पाठ दीदार दा ध्यान करके बोलो जी पंजां प्यारियां चौहां साहिबजादियां चाली मुक्तियां हठियां जपियां तपियां जिन्हां नाम जपिया वंड के छकिया देख चलाई देख वाही देख के अण जिठ कीता तिना प्यारियां सत्यारियां दी कमाई दा ध्यान करके खालसा जी साहिब बोलो जी जिन्हां सिंघां सिंघणियां ने धर्म हे सीस दिते बंद बंद कटाए खोपरिया लुहाइयां चरखड़ियां ते चढ़े आ रहे ने चराए गुरुद्वारां दी सेवा लई कुर्बानियां कीतियां धर्म निहारिया सिखी किस्सा सुरासन सिंह नभाई इतना दी कमाई दा ध्यान धरके खालसा जी साहिब बोलो जी पंजा तख्ता सरबत गुरुद्वारां दा ध्यान धरके बोलो जी प्रथमे सरबत खालसा जी की अरदास है जी सरबत खालसा जी को वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु चतावे चतावन का सदका सर्व सुख जाजा खालसा जी साहिब तह तह रिश्यार्याज देखते फतेह बिरत की पैज पंथ की जी श्री साहिब जी साहे खालसा जी के बोल बाले बोलो जी सिखा नु सिखी दान केस दान रहत दान विवेक दान विसहा दान भरोसा दान दाना सरदार नामदार श्री अमृतसर साहिब जी के दर्शन इशनान चौंकिया झंडे पुंगे जुग हो जुग अटल धर्म का जयकार बोलो जी सिखा दा मन नीवा मत उची मत पत का रखा आप वाहेगुरु हे अकाल पुरख अपने पंथ दे सदा सहाय दातार जी श्री ननकाणा साहिब ते होर गुरुद्वारियां गुरुधामा जिन्हां तो पंथ नूं छोड़िया गया खुले दर्शन दीदार सेवा संभालदा दान प्यारे खालसा जी नूं बख्शियो हिन माणियों के माण नितारियों के तान न्यूटियां दी ओर सच्चे पिता वाहेगुरु तन तन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जीओ दोए कर जोड़ करो अरदास तुद भावे ता आणे रास महाराज जी आप जी दे चरणां अरदास बेनती आप जी दी महान बख्शिश हुई अमृत वेले तो लैके हुण तक सिख संगता नूं खुले दर्शन दारे बुछ के निहाल कीता है संध्या वक्त दा समा जाण के सौदा रह रहा साहब दे जाप पए महाराज जी बाणी पढ़दे आप जी दी सेवा संभाल कर दिया होइयां बेअंत भुला बख्श देणियां जी अगे वास्ते समत बख्शिश करनी शुद्ध गुरबाणी गायन करन दा बल उत्तम बख्शिश करना जी बाणी दा भाव आईयां संगतां दे हिरदयां ते वसाउणा आईयां संगतां दी हारी दर प्रवान करनी सभना दियां तिल फुल भेटावां दर प्रवान करनियां सभना नूं दरों करन नामदान गुर सिखी जीवन बख्शिश करना चढ़दी कला बख्शिश करनी कृपा करनी महाराज जी दुखा कलेशा रोगां दा नाश करना जी सुखां दा प्रकाश करना देशां विदेशां विच रखिया बख्शिश करनी महाराज जी बिन संगतां दूर दराडे बैठे घरां विच लाइव गुरबाणी दे जाप सरवण कर रहियां हन जाप सरवण करदे आप जी दा धन्नवाद करदे आ बेअंत माया गुरु घर वास्ते गुरु घर दे सेवादारा सिंघां वास्ते ऑलन भेटा कीती महाराज जी सारी संगत दी हाजरी दर प्रवान करनी सभना दी माया सफली करनी किरतक माया वे बरकता पाउणियां श्रद्धा भावनावां संपूर्ण करनियां चढ़दी कला बख्शिश करनी तन तन साहिब श्री गुरु नानक साहिब महाराज जीओ अज आप जी का विआह पूर्व सिख गुरुद्वारा सैन हो जी दियां समूह संगतां अते बटाला निवासी समूह संगतां वल्लों अमृत वेले तो लैके हुण तक बड़े प्यार श्रद्धा भावना नाल मनाया गया ਬੇਅੰਤ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਤਨ ਮਨ ਧਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਦਰ ਦੀਆਂ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀਆਂ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਦਰ ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀਆਂ ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ ਦਰਮ ਪੁਰਾ ਨਾਮ ਦਾਨ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਜੀਵਨ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਵਿੱਚ ਏਕਤਾ ਪ੍ਰੇਮ ਭਾਵਨਾ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਆਪ ਜੀ ਦੀਆਂ ਬਖਸ਼ੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ
ਪਵਿੱਤਰ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੀ ਦੇਗ ਹਾਜ਼ਰ ਦਰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਏ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਏ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਵਰਤੇ ਜੋ ਛਕਿਆ ਆਪਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਨਾਮ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜਪਿਆ ਵੀ ਦਰ ਘਰ ਦੇ ਸੇਵਕ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਜ਼ੀਰ ਭਾਈ ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਾਜਵਾ ਦੀ ਦੇਹ ਉਗਤਾ ਵਾਸਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੰਗਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨੀ ਸੇਵਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਹ ਉਗਤਾ ਦਾਨ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੇ ਤੰਦਰੁਸਤੀਆਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨੀਆਂ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਬਖਸ਼ ਕੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਨਿਹਾਲ ਕਰੋ ਜੀ ਸੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਮੇਰਣਾ ਜਿੰਨਾ ਮਿਲਿਆ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਚਿੱਤਾਵੇ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਦੋਹਰਾ ਅਗਿਆ ਭਈ ਅਕਾਲ ਕੀ ਤਵੀ ਚਲਾਇਓ ਸਭ ਸਿੱਖਣ ਕੋ ਹੁਕਮ ਹੈ ਗੁਰੂ ਮਾਨਿਓ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਜੀ ਮਾਨਿਓ ਪ੍ਰਗਟ ਗੁਰਾ ਕੀ ਜੋ ਪ੍ਰਭ ਕੋ ਮਿਲ ਪੋ ਚਾਹੇ ਖੋਜ ਸ਼ਬਦ ਮੈਂ ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ ਖਾਲਸਾ ਆਕੀ ਰਹੇ ਨਾ ਪਾਰ ਹੋਏ ਸਾ ਮਿਲੇਗੇ ਬੱਚੇ ਸ਼ਰਨ ਜੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਮ ਜਹਾਜ਼ ਹੈ ਚੜੇ ਸੁਤਰੇ ਜੋ ਸ਼ਰਧਾ ਕਰ ਸੇਮ ਦੇ ਗੁਰ ਪਾਰ ਉਤਾਰਨ ਖੰਡਾ ਜਾ ਕੇ

है, पूर्व लिखत लिखे गुर पाया मन हर लिव मंडल मंडा है, कर साधु अंजलि पुन वड्डा है, कर डंडाओत पुन वड्डा है रहाओ, साक्त हर रस साधना जानिया तने अंतर हमें कंडा है, ज्यो ज्यो चढ़े चुभे दुख पावे जमकाल सह सिर डंडा है, हर जन हर हर नाम सुमाने दुख जन्म मरण पव खंडा है, अविनाशी पुरुष पाया परमेश्वर बहु शोभ खंड ब्रह्मंडा है। हम

अरसों पुरसों चटी है तुद डिठे सच्चे पातशाह मल जन्म जन्म दी कटी है सच्चा पातशाह।

अचल अछेद अपार प्रभ ऊंचा जाका रूप जप जप कर है अनंत जन

ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਤਨਾਮ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਤਨਾਮ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਗੌੜੀ ਸੁਖਮਨੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ, ਸਲੋਕ ਇੱਕ ਓਅੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਆਦਿ ਗੁਰ ਏ ਨਮ ਹੈ, ਜੁਗਾਦ ਗੁਰ ਏ ਨਮ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰ ਏ ਨਮ ਹੈ, ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰਦੇਵ ਏ ਨਮ ਹੈ। ਅਸ਼ਟਪਦੀ ਸਿਮਰੋ ਸਿਮਰ ਸਿਮਰ ਸੁਖ ਪਾਵੋ, ਕਲ ਕਲੇਸ ਤਨ ਮਾਹਿ ਮਿਟਾਵੋ। ਸਿਮਰੋ ਜਾਸ ਵਿਸੰਭਰ, ਏਕੈ ਨਾਮ ਜਪਤ ਅਗਨਤ ਅਨੇਕੈ। ਵੇਦ ਪੁਰਾਣ ਸਿਮਰਤ ਸੁਦਾਖਰ, ਕਿਨੇ ਰਾਮ ਨਾਮ ਇੱਕ ਆਖਰ। ਕਿਨ ਕਾ ਇੱਕ ਜੇ ਜੀਵ ਵਸਾਵੇ, ਤਾਂ ਕੀ ਮਹਿਮਾ ਗਨੀ ਨਾ ਆਵੇ। ਕਾਂ ਖੀਏ ਕੈ ਦਰਸ ਤੁਹਾਰੋ, ਨਾਨਕ ਗੁਣ ਸੰਗ ਮੋਹੇ ਉਧਾਰੋ। ਸੁਖ ਮਨੀ ਸੁਖ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪ੍ਰਭ ਨਾਮ, ਭਗਤ ਜਨਾ ਕੈ ਮਨ ਵਿਸਰਾਮ ਰਹਾਉ। ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸਿਮਰਨ ਗਰਭ ਨਾ ਵਸੈ, ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸਿਮਰਨ ਧੂਪ ਜਮ ਨਸੈ, ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸਿਮਰਨ ਕਾਲ ਪਰ ਹਰੈ, ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸਿਮਰਨ ਦੁਸ਼ਮਣ ਟਰੈ, ਪ੍ਰਭ ਸਿਮਰਤ ਕਛੁ ਵਿਘਨ ਨਾ ਲਾਗੇ, ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸਿਮਰਨ ਅਨਦਿਨ ਜਾਗੇ, ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸਿਮਰਨ ਭਾਵਨਾ ਵਿਆਪੈ, ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸਿਮਰਨ ਦੁਖ ਨਾ ਸੰਤਾਪੈ, ਪ੍ਰਭ ਕਾ ਸਿਮਰਨ ਸਾਧ ਕੈ ਸੰਗ, ਸਰਬ ਨਿਧਾਨ ਨਾਨਕ ਹਰ ਰੰਗ, ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸਿਮਰਨ ਵਿਦ ਸਿਧ ਨਉ ਨਿਧ, ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸਿਮਰਨ ਗਿਆਨ ਧਿਆਨ ਤਤ ਬੁੱਧ, ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸਿਮਰਨ ਜਾਪ ਜਪ ਤਪ ਪੂਜਾ, ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸਿਮਰਨ ਬਿਨਸੈ ਦੂਜਾ, ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸਿਮਰਨ ਤੀਰਥ ਇਸ਼ਨਾਨੀ, ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸਿਮਰਨ ਦਰਗਹਿ ਮਾਨੀ, ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸਿਮਰਨ ਹੋਏ ਸੋ ਭਲਾ, ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸਿਮਰਨ ਸੁਫਲ ਫਲਾ। ਸੇ ਸਿਮਰੈ ਜਿਨ ਆਪ ਸਿਮਰਾਏ, ਨਾਨਕ ਭਾਕੇ ਲਾਗੋ ਪਾਏ, ਪ੍ਰਭ ਕਾ ਸਿਮਰਨ ਸਭ ਤੇ ਉੱਚਾ, ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸਿਮਰਨ ਉਧਰੇ ਮੂੰਚਾ, ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸਿਮਰਨ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਬੁਝੈ, ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸਿਮਰਨ ਸਭ ਕੇ ਸੁਝੈ, ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸਿਮਰਨ ਨਾਹੀ ਜਮ ਤ੍ਰਾਸਾ, ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸਿਮਰਨ ਪੂਰਨ ਆਸਾ, ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸਿਮਰਨ ਮਨ ਕੀ ਮਲ ਜਾਏ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮ ਵਿਦ ਮਾਹੇ ਸਮਾਏ। ਪ੍ਰਭ ਜੀ ਵਸੈ ਸਾਧ ਕੀ ਰਸਨਾ, ਨਾਨਕ ਜਨ ਕਾ ਦਾਸਨ ਦਸਨਾ, ਪ੍ਰਭ ਕੋ ਸਿਮਰੈ ਤੇ ਸੇ ਧਨਵੰਤੇ, ਪ੍ਰਭ ਕੋ ਸਿਮਰੈ ਸੇ ਪਤਵੰਤੇ, ਪ੍ਰਭ ਕੋ ਸਿਮਰੈ ਸੇ ਜਨ ਪਰਵਾਨ, ਪ੍ਰਭ ਕੋ ਸਿਮਰੈ ਸੇ ਪੁਰਖ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਪ੍ਰਭ ਕੋ ਸਿਮਰੈ ਸੇ ਬਿਹਮੂ ਤਾਜੇ, ਪ੍ਰਭ ਕੋ ਸਿਮਰੈ ਸੇ ਸਰਬ ਕੇ ਰਾਜੇ, ਪ੍ਰਭ ਕੋ ਸਿਮਰੈ ਸੇ ਸੁਖਵਾਸੀ, ਪ੍ਰਭ ਕੋ ਸਿਮਰੈ ਸਦਾ ਅਵਿਨਾਸੀ, ਸਿਮਰਨ ਤੇ ਲਾਗੇ ਜਿਨ ਆਪ ਦਇਆਲਾ, ਨਾਨਕ ਜਨ ਕੀ ਮੰਗੈ ਰਵਾਲਾ, ਪ੍ਰਭ ਕੋ ਸਿਮਰੈ ਸੇ ਪਰਉਪਕਾਰੀ, ਪ੍ਰਭ ਕੋ ਸਿਮਰੈ ਤਿਨ ਸਦ ਬਲਹਾਰੀ, ਪ੍ਰਭ ਕੋ ਸਿਮਰੈ ਸੇ ਮੁਖ ਸੁਹਾਵੇ, ਪ੍ਰਭ ਕੋ ਸਿਮਰੈ ਤਿਨ ਸੂਖ ਬਿਹਾਵੇ, ਪ੍ਰਭ ਕੋ ਸਿਮਰੈ ਤਿਨ ਆਤਮ ਜੀਤਾ, ਪ੍ਰਭ ਕੋ ਸਿਮਰੈ ਤਿਨ ਨਿਰਮਲ ਬੀਤਾ, ਪ੍ਰਭ ਕੋ ਸਿਮਰੈ ਤਿਨ ਅਨੰਦ ਘਨੇਰੇ, ਪ੍ਰਭ ਕੋ ਸਿਮਰੈ ਵਸੈ ਹਰਨੇਰੇ, ਸੰਤ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਅਨਦਿਨ ਜਾਗ, ਨਾਨਕ ਸਿਮਰਨ ਪੂਰੇ ਭਾਗ, ਪ੍ਰਭ ਕੇ ਸਿਮਰਨ ਕਾਰਜ ਪੂਰੇ, ਪ੍ਰਭ ਕੇ ਸਿਮਰਨ ਕਬੂ ਨਾ ਝੋਰੇ, ਪ੍ਰਭ ਕੇ ਸਿਮਰਨ ਹਰ ਗੁਣ ਬਾਣੀ, ਪ੍ਰਭ ਕੇ ਸਿਮਰਨ ਸਹਿ ਸਮਾਨੀ, ਪ੍ਰਭ ਕੇ ਸਿਮਰਨ ਨਿਹਚਲ ਆਸਨ, ਪ੍ਰਭ ਕੇ ਸਿਮਰਨ ਕਮਲ ਵਿਗਾਸਨ, ਪ੍ਰਭ ਕੇ ਸਿਮਰਨ ਅਨਹਦ ਚੁਨਕਾਰ, ਸੁਖ ਪ੍ਰਭ ਸਿਮਰਨ ਕਾ ਅੰਤ ਨ ਪਾਰ, ਸਿਮਰੇ ਸੇ ਜਿਨ ਜਿਨ ਕੋ ਪ੍ਰਮਾਇਆ, ਨਾਨਕ ਤਿੰਨ ਜਨ ਸ਼ਰਨੀ ਪਾਇਆ, ਹਰ ਸਿਮਰਨ ਕਰ ਭਗਤ ਪ੍ਰਗਟਾਏ, ਹਰ ਸਿਮਰਨ ਲਗ ਵੇਦ ਉਪਾਏ, ਹਰ ਸਿਮਰਨ ਪਏ ਸਿਧ ਜਤੀ ਦਾਤੇ, ਹਰ ਸਿਮਰਨ ਨੀ ਚਹੁ ਕੁੜ ਜਾਤੇ, ਹਰ ਸਿਮਰਨ ਧਾਰੀ ਸਭ ਧਰਨਾ, ਸਿਮਰ ਸਿਮਰ ਹਰ ਕਾਰਨ ਕਰਨਾ, ਹਰ ਸਿਮਰਨ ਕੀ ਉਹ ਸਗਲਾ ਕਾਰਾ, ਹਰ ਸਿਮਰਨ ਮੈਂ ਆਪ ਨਿਰੰਕਾਰ, ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਜਿਸਾ ਬੁਝਾਇਆ, ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਖ ਹਰ ਸਿਮਰਨ ਤਿਨ ਪਾਇਆ, ਸਲੋਕ ਦੀਨ ਦਰਦ ਦੁੱਖ ਭੰਜਨਾ, ਘੜ ਘੜ ਨਾਥ ਅਨਾਥ, ਸ਼ਰਨ ਤੁਮਾਰੀ ਆਇਓ ਨਾਨਕ ਕੇ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਅਸ਼ਟਪਦੀ ਜੈ ਮਾਤ ਪਿਤਾ ਸੁਤਮੀਤ ਨ ਭਾਈ, ਮਨ ਊਹਾ ਨਾਮ ਤੇਰੇ ਸੰ ਸਹਾਈ, ਜੈ ਮਹਾ ਭਿਆਨ ਰੂਪ ਜਮਦਲੈ, ਤੈ ਕੇਵਲ ਨਾਮ ਸੰਗ ਤੇਰੇ ਚਲੈ, ਜੈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਭਾਰੀ, ਹਰ ਕੋ ਨਾਮ ਕਿਨ ਮਾਹਿ ਉਧਾਰੀ, ਅਨਕ ਪੁਨੇ ਚਰਨ ਕਰਤ ਨਹੀਂ ਤਰੈ, ਹਰ ਕੋ ਨਾਮ ਕੋਟ ਪਾਪਰ ਹਰੇ, ਗੁਰਮੁਖ ਨਾਮ ਜਪੋ ਮਨ ਮੇਰੇ, ਨਾਨਕ ਪਾਵੋ ਸੁਖਨੇ, ਸਗਲ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟ ਕੋ ਰਾਜਾ ਦੁਖੀਆ, ਹਰ ਕਾ ਨਾਮ ਜਪਤ ਹੋਏ ਸੁਖੀਆ, ਲਾਖ ਕਰੋਰੀ ਬੰਧਨ ਪਰੇ, ਹਰ ਕਾ ਨਾਮ ਜਪਤ ਨਿਸਤਰੇ, ਅਨਕ ਮਾਇਆ ਰੰਗ ਤਿੱਖਣਾ ਬੁਝਾਵੇ, ਹਰ ਕਾ ਨਾਮ ਜਪਤ ਆਘਾਵੇ, ਜੇ ਮਾਰਗ ਇਹੋ ਜਾਤ ਇਕੇਲਾ, ਤਹਿ ਹਰ ਨਾਮ ਸੰਗ ਹੋਤ ਸੁਹੇਲਾ, ਸਨਾ ਮਨ ਸਦਾ ਧਿਆਈਏ ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਖ, ਪਰਮ ਗਤ ਪਾਈਏ ਛੂਟਤ ਨਹੀਂ ਕੋਟ ਲਖ ਬਾਹੀ, ਨਾਮ ਜਪਤੈ ਪਾਰ ਪਰਾਹੀ, ਅਨਕ ਬਿਗਨ ਜੈ ਆਏ ਸੰਘਾਰੇ, ਹਰ ਕਾ ਨਾਮ ਤਤਕਾਲ ਉਧਾਰੇ, ਅਨਕ ਜੋਨ ਜਨਮੈ ਮਰ ਜਾਮ, ਨਾਮ ਜਪਤ ਪਾਵੇ ਵਿਸਰਾਮ, ਹੋ ਮੈਲਾ ਮਲ ਕਬੂ ਨਾ ਧੋਵੇ, ਹਰ ਕਾ ਨਾਮ ਕੋਟ ਪਾਪ ਖੋਵੇ, ਐਸਾ ਨਾਮ ਜਪੋ ਮਨ ਰੰਗ, ਨਾਨਕ ਪਾਈਏ ਸਾਧਕੇ ਸੰਗ, ਜੇ ਮਾਰਗ ਕੇ ਗਨੇ ਜਾਏ ਨਾ ਕੋਸਾ, ਹਰ ਕਾ ਨਾਮ ਉਆ ਸੰਗ ਤੋਸਾ, ਜੈ ਪੈਂਡੇ ਮਹਾਂ ਅੰਧ ਗੁਬਾਰਾ, ਹਰ ਕਾ ਨਾਮ ਸੰਗ ਉਜਿਆਰਾ, ਜਹਾਂ ਪਦ ਤੇਰਾ ਕੋ ਨਾ ਸੰਜਾਨੂ, ਹਰ ਕਾ ਨਾਮ ਤਹਿ ਨਾਲ ਪਛਾਨੂ,
जय महाप्रयान तपत बहु काम ते हर के नाम की तुम ऊपर छाम। जा त्रिखामन तुझ आकर खे तह नानक हर हर अमृत बरखे भगत जना की बरतन नाम संत जना कह मन विश्राम। हर का नाम दास की ओट हर के नाम उदरे जन कोट हर जस करत संत दिन रात हर हर औखत साध कमात हर जन के हर नाम निधान पार ब्रह्मजन की नोदान मन तन रंग रते रंग एक नानक जन के बिरद विवेक है। हर का नाम जन को मुकत जुगत हर के नाम जन को तृप्त भुगत हर का नाम जन का रूप रंग हर नाम जगत का परे न भांग हर का नाम जन की बढ़ियाई हर के नाम जन शोभा पाई हर का नाम जन को भोग जोग हर नाम जपत कछनाई वियोग जन दाता हर नाम की सेवा नानक पूजे हर हर देवा हर हर जन के मान खजीना हर तन जन को आप प्रभ दीना हर हर जन के ओठ सतानी हर प्रताप जन अवर न जानी ओत पोत जन हर रसराते सुन समाध नाम रसमाते आठ पहर हर हर जन आठ पहर जन हर हर जपे हर का भगत प्रगट नहीं छपे हर की भगत मुकत बहु करे नानक जन संकेत तरे पार जात एहु हर को नाम काम तेन हर हर गुणगाम सब ते उत्तम हर की कथा नाम सुनत दर्द दुख लथा नाम की महिमा संत रिदवसे संत प्रताप दूत सब नसे संत कथन वट भागी पाइये संत की सेवा नाम त्याये नाम तुल कछ अवर न होय नान गुरुमुख नाम पावे जन कोय सलोक बहु शास्त्र बहु सिमरति देखे सर्व टंडोल पूजस नाही हर हरे नानक नाम अमोल अष्टपदी चाप ताप ज्ञान सब ध्यान खट शास्त्र सिमरत वख्यान जोग अभ्यास करम धर्म क्रिया सगल त्याग बन मदे फिरे अनेक प्रकार के बहु जतना पुन दान हो मैं बहु रत्न शरीर कटाए हो मैं कर राति व्रत नियम करे बहु पाति नहीं तुरु राम नाम विचार नान गुरुमुख नाम जपिए एक बार नवखंड पृथ्वी फिर चिर जीवे महादास तपीसर थीवे अगन माहे हो मत प्राण कनक असो है वर भूम दान न्योली कर्म करे बहु आसन जैन मार्ग संजम अत साधन निमखन में कर शरीर कटावे तो पी हो मैं मैल न जावे हर के नाम सम सरकृष्णाय नान गुरुमुख नाम जपत गत पाहे मन कामना तीर दे छुटे गर्भ गुमान न मन ते उठे सोच करे दिन सर रात मन की मैल न तन ते जात इस देही को बहु साधना करे मन ते कभू न बिखे अटरे जल धोवे बहु देह अनीत सुध का होय काची पीत मन हर के नाम की महिमा ऊच नानक नाम उदरे पतत बहु मूच बहुत सियाणव जमका पौ व्यापै अनक जतन कर तृष्ण ना त्रापै पेक अनेक गंदी बुझे कोट उपाव दरगह नहीं सीजे छूटस नाही उपयाल मोहि व्यापै माया जान अवर करतूत सगली जमनाने गोविंद भजन बिन तिन्ने माने हर का नाम जपत दुख जाय नानक बोले सह सुभाए चार पदार्थ जे को मांगे साधना की सेवा लागे जे को अपना दुख मिटावे हर हर नाम हृदय सदगावे जे को अपनी शोभा लोरे साध संग एहो में छोरे जे को जन्म मरण ते डरे साध जना की सरनी पर जे जन को प्रभु दर्स प्यासा नानक ताके बल बल जासा सगल पुरख में पुरख प्रधान साध संग जा का मिटे अभिमान आपस को जो जाने नीचा सौ गनी सब ते ऊंचा जा का मन हो सगल की रीना हर हर नाम तिन घट घट चीना मन अपने ते बुरा मिटाना देखे सगल सृष्ट साजना सुख दुख जन सब दृष्टिता नानक पाप पुन नहीं ले पाने तन को तन तेरो नाओ निथाओ कनाओ तेरा थाओ निमाने कुपर तेरो मान सकल कटा को देव दान करन करावन हर स्वामी सकल कटा के अंतर जामी अपनी गत मत जानो आपे आपन संग आप पर प्राते तुमरी उस्त तुम ते हुए नानक अब न जानस कोई सर्व धर्म में श्रेष्ठ धर्म हर को नाम जप निर्मल करम सगल क्रिया में उत्तम क्रिया साध संग दुर्मत मलहरिया सगल उद्यम में उद्यम पलार का नाम जपो जी सदा सगल बानी में अमृत बानी हर को जस सुन रसन बखानी सगल थान ते उत्तम थान नानक जी कट बसे हर नाम सलोक निर्गुने आ रहे हैं सो प्रभ सदा समार जिन किया ते चीत रख नानक निविहीना अष्टपदी रमैया के गुंचेत प्राणी कवन मूलते कवन दृष्टान जिन तू सास सवार सिगारे गर्भ अगन में जिन्हें उबारे पार व्यवस्था तुझे प्यार है दूध पर जोवन भोजन सुख सूद वृद्ध पयाओ पर साख सहन मुख अपयाओ बैठ को दयान ए निर्गुण गुण कछुना पूजे बख्श ले तो नानक सी जय जे प्रसाद थरो ऊपर सुख बसे सुत प्राद नीत बनता संग हसे जे प्रसाद पीवे शीतल जला सुखदाई पावन पावन सुखदाई पवन पावक अमूला जे प्रसाद पो गए सब रसा सगल सामग्री संग साथ बसा दीने हस्त पाव कर नेत्र रसना
तिसै त्याग अवर सिंह रचना ऐसे लोक मूड अंध जापे नानक काण देहो प्रभ आपे आद अंत जो राखन हार तिसो प्रीत न करे गवार जा किसी वन निभावे था सु मूड़ा मन नहीं लावे मन नहीं लावे जूठा गुर सदसदा हजूरी ता को अंता जान दूरी जाकी टहल पावे दरगे मान तिसे विसारे मुग्ध अजान सदा सदा ए भूलन हार नानक राखन हार अपार सदा सदा ए भूलन हार नानक राखन हार अपार रतन त्या कोड़ी संग रचे साच छोड़ झूठ संग मसे साच छोड़ झूठ संग मचे जो छड़ना सो अस्थिर कर माने जो होवन सो दूर पराने छोड़ जाए तिसका श्रम करे संग सहाय तिस पर हरे चंदन लेख उधारे तो हे गर्दव प्रीत पसम संग होए अंधकूप में पतत विकराल नानक काढ़ देहु प्रभु दयाल करतूत पशु की मानस जात लोक पचारा करे दिन रात भार भेक अंतर मल माए छप सनाए कछ करे छपाया बार ज्ञान ध्यान स्नान अंतर व्यापे लोक स्वान अंतर अगन पार तन स्वागल पात्र कैसे तरह अथा जाके अंतर बसे प्रभ आप नानक तेजन सह समात सुन अंधा कैसे मार्ग पावे कर गए लेह ओढ़ निभावे कहाँ बुझारत बुझे डोरा नहीं कहिए तो समझे पोहरा कहाँ विष्णपद गावे गुंग जतन करे तो पीसुर पांग के पिंगुल पर्वत पर पवन नहीं होत उहां उस गवन करतार करना में दीन बेनती करे नानक तुम्हारी कृपा तरे संग सहाय स्वाव ने चीत जो बैरायता सुप्रीत बलवा के ग्रह पीतर बसे आनंद केल माया रंग रस है दृढ़ कर मने मने प्रतीत काल न आवे मुड़े चीत बैर विरोध काम क्रोध मोह झूठ विकार महालोक त्रो यहाँ हो जुगत बिहाने कहीं जन्म नानक राख लियो आपन कर क्रम झूठा गुरु तुम पे अरदास जियो पिंड सब तेरी रास तुम मात पिता हम बारिक तेरे तुम्हारी कृपा में सो कनेरे को न जाने तुम्हारा अंत ऊंचे ते ऊंचा भगवान सगल सामग्री तुम्हारे सूत्र तारी तुम ते हो साकारी तुम्हारी गत में तुम ही जानी नानक दास ला कुर्बानी सलोक दीन हर प्रभ छोड़ के लागे अंसुआ नानक कहूं नसी जय बिन नावे पुत जाय अष्टपदी दस पर तूले पाछे पावे एक वस्त कारण बिकोट गवावे एक पीना दे दस पी हिर ले तो मूड़ा कहूं का करे जी ठाकुर से नाही चारा ताको किजे सद नमस्कारा जाके मन लाग पर मीठा सर्व सुख कहु मन बुठा जिसे अपना हुक्म बनाया सर्व तो नानक तिन पाया अगनत साहू अपनी दे रास खात पीत पर ते अनद उलास अपनी अमान कछ पाहु साहुले अज्ञानी मन रोस करे अपनी प्रतीत आप ही कहे बहुत उसका विश्वास न होवे जिसकी बस सागर रखे प्रभु की आज्ञा माने माते उसते चौगन करे निहाल नानक साहिब सदा दयाल अनक पात माया के हेत सर पर होवत जाना नेत बिरखी छाया से रंग लावे ओह बिन से ओ मन पछतावे ज्योति से सो चालन हार लपट होते अंधार बटाओ से जो लावे नहीं ताको हाथ न आवे के मन हर के नाम की प्रीत सुखदाई कर कृपा नानक आप ले लाए मिथ्या तन तन कुटुंब समाया मिथ्या हो में ममता माया मिथ्या राजो बंधन माल मिथ्या काम क्रोध विकराल मिथ्या रथ अस्थि अशुभस्त्र मिथ्या रंग संग माया पे खस्ता मिथ्या त्रोह मोह अभिमान मिथ्या पशु प्रकृत गुमान अस्थिर भगत साध की शरण नानक जब जब जीव हर के चरण मिथ्या श्रवण पर निंदा सुने मिथ्या हस्त पर द्रव को हिरे मिथ्या नेत्र पे कृत पर त्रिय रूपाद मिथ्या रसना भोजन अनुस्वाद मिथ्या चरण पर विकार को तावे मिथ्या मन पर लोभ लुभावे मिथ्या तन नहीं पर उपकारा मिथ्या बास लेत विकारा मिन बुझे मिथ्या सब पहे सफल दे नानक हर हर नाम ले बिरथी साकत की आर जा साज बिना कह होवत सूचा बिरथा नाम बिना तन अंध मुकावत ताके दुर्गंध बिन सिमरन दिन रैन बिरथा बिहाय में बिना जो खेती जाए गोविंद भजन बिन बिरथे सब काम जो कृपन के निरारत नाम तन तन तेजन जेकट पस्यो हर नाम नानक ताके बल बल जाओ रहत अवर कच अवर कमावत मन नहीं प्रीत मुखो गण लावत जानन हार प्रभु पर बीन बार भेग न कहूं पीन अवर उपदेश अपना करे आवत जावत जन्म मेरे जिसके अंतर बसे निरंकार तिसकी सीख करे संसार जो तुम पाने तिन प्रभु जाता नानक उनजन चरण प्राता करो बेनती पार ब्रह्म सब जाने अपना किया आपे माने आपे आप करत निबेरा किसे दूर जनावत किसे बुझावत नेरा उपाव स्यानव सगल ते रहत सब किस जाने अतम की रहत जिस पावे तिसले लड़वाए थांतर अंतर है समाय सो सेवक जिस कृपा करी निमक निमक जप नानक हरि श्लोक काम क्रोध अर लोभ मोह बिनस जाए अहमेव नानक प्रभु शरणागति कर प्रसाद गुरुदेव अष्टपदी जे प्रसाद सत्य अमृत खाए तिस ठाकुर को रखमन माए जे प्रसाद सुगंध तन लावे तिसको सिमरत कर परम गत पावे तिसको सिमरत परम गत पावे जे प्रसाद बसै सुख मंदर तिसे त्याय सदा मन अंदर जे प्रसाद गृह संग सुख बसना आठ पैर सिमरो तिस रसना जे प्रसाद संग रस भोग नानक सदा त्याई त्यावन जोग जे प्रसाद पाठ नंबर हंडावे तिसे त्यागत अवर लुभावे जे प्रसाद सुख से सोई जे मनाठ पैर ताका जस गावे जे प्रसाद तू सब को माने
ਮੁਕਤਾਂ ਕੋ ਜਸਰ ਸੁਨਮੁਖਾ ਨੇ ਜੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਤੇਰੇ ਰਹਿ ਤਾਂ ਧਰਮ ਮਨ ਸਦਾ ਧਿਆਇ ਕੇਵਲ ਪਾਲ ਬ੍ਰਹਮ ਪੁਰਬ ਜੀ ਜੇ ਪੱਤਰ ਕੇ ਮਨ ਪਾਵੇ ਨਾਨਕ ਪਰਸੇ ਧੀ ਘਰ ਜਾਵੇ ਜੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਆਰੋ ਕੰਚਨ ਕੰਚਨ ਦੇਹੀ ਲਿਵਲਾਉ ਤਿਸ ਰਾਮ ਸੁਨੇਹੀ ਜੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਤੇਰਾ ਓਲਾ ਰਹਿਤ ਮਨ ਸੁਖ ਪਾਵੇ ਹਰ ਹਰ ਜਸ ਕਹਿਰ ਜੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਤੇਰੀ ਸਗਲ ਛਿਦਰ ਢਾਕੇ ਮਨ ਸਰਨੀ ਪਰ ਠਾਕੁਰ ਪ੍ਰਭ ਟਾਕੇ ਜੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਤੁਝ ਕੋ ਨਾ ਪਹੁੰਚੇ ਮਨ ਸਾਹ ਸਾਹ ਸਿਮਰੋ ਪ੍ਰਭੁਚੇ ਜੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਪਾਏ ਦੁਰਲਭ ਦੇ ਨਾਨਕ ਤਾਂ ਕੀ ਭਗਤ ਕਰੇ ਜੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਆ ਭੋਖਨ ਪਹਿਰੇ ਜੇ ਮਨ ਤਿਸ ਸਿਮਰਤ ਕਿਉਂ ਰਸ ਕੀਜੇ ਜੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਅਸਵਹਸਤ ਅਸਵਾਰੀ ਮਨ ਤਿਸ ਪ੍ਰਭੂ ਕਬੂ ਨਾ ਵਿਸਾਰੀ ਜੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਬਾਗ ਮਿਲਕ ਧਨਾ ਰਾਤ ਪਰੋਏ ਪ੍ਰਭ ਆਪਣੇ ਮਨਾ ਜਿਨ ਤੇਰੀ ਮਨ ਬਨਤ ਬਣਾਈ ਉਠਤ ਬੈਠਤ ਸਤਿ ਸਹਿ ਧਿਆਈ ਤਿਸ ਧਿਆਇ ਜੋ ਇਕ ਲਖੇ ਈਹਾ ਉਹਾ ਨਾਨਕ ਤੇਰੀ ਰੱਖੇ ਜੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਕਰੇ ਪੁੰਨ ਬਹੁਦਾਨ ਮਨ ਆਠ ਪਹਿਰ ਕਰ ਤਿਸਕਾ ਧਿਆਨ ਜੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਤੂੰ ਆਚਾਰ ਵਿਵਹਾਰੀ ਤਿਸ ਪ੍ਰਭ ਕੋ ਸਾਹ ਸਾਹ ਚਿਤਾਰੀ ਜੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਤੇਰਾ ਸੁੰਦਰ ਰੂਪ ਸੋ ਪ੍ਰਭ ਸਿਮਰੋ ਸਦਾ ਅਨੂਪ ਜੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਤੇਰੀ ਨਿੱਕੀ ਜਾਤ ਸੋ ਪ੍ਰਭ ਸਿਮਰ ਸਦਾ ਦਿਨ ਰਾਤ ਜੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਤੇਰੀ ਪਤ ਰਹਿ ਗੁਰੂ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨਾਮ ਜਸ ਕਹਿ ਜੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸੁਣੇ ਕਰਨ ਨਾਲ ਜੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਭੇਖੇ ਵਿਸਵਾਸ ਜੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਬੋਲੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰਸਨਾ ਜੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸੁਖ ਸਹਿ ਜੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਜੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਹਸਤ ਕਰ ਚਲੇ ਜੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸੰਪੂਰਨ ਫਲੇ ਜੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਪਰਮਗਤ ਪਾਵੇ ਜੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸੁਖ ਸਹਿ ਸਮਾਵੇ ਸਾ ਪ੍ਰਭ ਤਿਆਗ ਅਮਰਗਤ ਲਾਗੂ ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦ ਨਾਨਕ ਮਨ ਜਾਗੋ ਜੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਤੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਸੰਸਾਰ ਤਿਸ ਪ੍ਰਭ ਕੋ ਮੂਲ ਨਾ ਮਨੋ ਵਿਸਾਰ ਜੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਤੇਰਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਰੇ ਮਨ ਮੂੜ ਤੂੰ ਤਾਂ ਕੋ ਜਾਪ ਜੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਤੇਰੇ ਕਾਰਜ ਪੂਰੇ ਸਦਾ ਤਿਸੈ ਜਾਣ ਮਨ ਸਦਾ ਹਜ਼ੂਰੇ ਜੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਤੂੰ ਪਾਵੇ ਸਾਚ ਰੇ ਮਨ ਮੇਰੀ ਤੂੰ ਤਾਂ ਸਿਉ ਰਾਜ ਜੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸਭ ਕੀ ਗਤ ਹੋਏ ਨਾਨਕ ਜਾਪ ਜਪੇ ਜਪ ਸੋ ਆਪ ਜਪਾਏ ਜਪੈ ਸੋਨਾ ਆਪ ਗਵਾਏ ਸੋ ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਓ ਪ੍ਰਭ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਹੋ ਪ੍ਰਗਾਸ ਪ੍ਰਭੂ ਦਇਆ ਤੇ ਕਮਲ ਵਿਗਾਸ ਪ੍ਰਭ ਸੋ ਪ੍ਰਸੁਨ ਪਸੈ ਮਨ ਸੋਏ ਪ੍ਰਭ ਦਇਆ ਤੇ ਮਤ ਉੱਤਮ ਹੋਏ ਸਰਬ ਨਿਧਾਨ ਪ੍ਰਭ ਤੇਰੀ ਮੈਂ ਆਪ ਕਛੂ ਨਾ ਕਿਨ ਹੂੰ ਲਿਆ ਜਿਤ ਜਿਤ ਲਾਭੋ ਤਿਤ ਲੱਗੇ ਹਰ ਨਾਥ ਨਾਨਕ ਇਨ ਕੈ ਕਛੂ ਨਾ ਹਾਥ ਚਲੋ ਅਗਮ ਅਗਾਧ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਸੋਏ ਜੋ ਜੋ ਕਹਿ ਸੋ ਮੁਕਤਾ ਹੋਏ ਸੁਨ ਮੀਤਾ ਨਾਨਕ ਬਿਨਵੰਤਾ ਸਾਧ ਜਿਨਾ ਕੀ ਅਚਰਜ ਕਥਾ ਅਸ਼ਟਪਦੀ ਸਾਧ ਕੈ ਸੰਗ ਕੋ ਜਲ ਹੋਤ ਸਾਧ ਸੰਗ ਮਲ ਸਗਲੀ ਖੋਤ ਸਾਧ ਕੇ ਸੰਗ ਮਿਟੇ ਅਭਿਮਾਨ ਸਾਧ ਕੇ ਸੰਗ ਪ੍ਰਗਟੇ ਸੋ ਗਿਆਨ ਸਾਧ ਕੇ ਸੰਗ ਬੁਝੇ ਪ੍ਰਭ ਨੀਰਾ ਸਾਧ ਸੰਗ ਸਭ ਹੋਤ ਨਿਵੇਰਾ ਸਾਧ ਕੇ ਸੰਗ ਪਾਏ ਨਾਮ ਰਤਨ ਸਾਧ ਕੇ ਸੰਗ ਏਕ ਉਪਰ ਜਤਨ ਸਾਧ ਕੀ ਮਹਿਮਾ ਵਰਨੇ ਕੌਣ ਪ੍ਰਾਣੀ ਨਾਨਕ ਸਾਧ ਕੀ ਸੋਭਾ ਪਰਮਾ ਹੈ ਸਮਾਨੀ ਸਾਧ ਕੇ ਸੰਗ ਅਗੋਚਰ ਮਿਲੇ ਸਾਧ ਕੇ ਸੰਗ ਸਦਾ ਪ੍ਰਭੂਲੇ ਸਾਧ ਕੇ ਸੰਗ ਆਵੇ ਬਸ ਪੰਚਾ ਸਾਧ ਸੰਗ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰਸ ਪਹੁੰਚਾ ਸਾਧ ਸੰਗ ਹੋਈ ਸਭ ਕੀ ਰੇਮ ਸਾਧ ਕੇ ਸੰਗ ਮਨੋਹਰ ਬਹਿਣ ਸਾਧ ਕੇ ਸੰਗ ਨਕ ਤੂੰ ਧਾਵੇ ਸਾਧ ਸੰਗ ਅਸਤਿਤ ਮਨ ਪਾਵੇ ਸਾਧ ਕੇ ਸੰਗ ਮਾਇਆ ਤੇ ਭਿੰਨ ਸਾਧ ਸੰਗ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਭ ਸੋ ਕਰ ਸਭ ਸਾਧ ਸੰਗ ਦੁਸ਼ਮਣ ਸਭ ਮੀਤ ਸਾਧੂ ਕੇ ਸੰਗ ਮਹਾਂਪੁਰੀਤ ਸਾਧ ਸੰਗ ਕੀ ਸੁਨੇਹੀ ਪੈਰ ਸਾਧ ਕੇ ਸੰਗ ਨਾ ਬੀਗਾ ਪੈਰ ਸਾਧ ਕੇ ਸੰਗ ਨਾ ਹੀ ਕੋ ਮੰਦਾ ਸਾਧ ਸੰਗ ਜਾਣੇ ਪਰਮਾਨੰਦਾ ਸਾਧ ਕੇ ਸੰਗ ਨਾ ਹੀ ਹੋ ਤਾਪ ਸਾਧ ਕੇ ਸੰਗ ਤਜੇ ਸਭ ਆਪ ਆਪੇ ਜਾਣੇ ਸਾਧ ਬੜਾਈ ਨਾਨਕ ਸਾਧ ਪ੍ਰਭੂ ਮਨ ਆਈ ਸਾਧ ਕੇ ਸੰਗ ਨਾ ਕਬੂ ਧਾਵੇ ਸਾਧ ਕੇ ਸੰਗ ਸਦਾ ਸੁਖ ਪਾਵੇ ਸਾਧ ਸੰਗ ਬਸ ਅਗੋਚਰ ਲਹਿ ਸਾਧੂ ਕੇ ਸੰਗ ਅਜਰ ਸਹਿ ਸਾਧ ਕੇ ਸੰਗ ਵਸੇ ਥਾਨ ਉੱਚੇ ਸਾਧੂ ਕੇ ਸੰਗ ਮਹਿਲ ਪਹੁੰਚੇ ਸਾਧ ਕੇ ਸੰਗ ਦਿਰਵੇ ਸਭ ਧਰਮ ਸਾਧ ਕੇ ਸੰਗ ਕੇਵਲ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਸਾਧ ਕੇ ਸੰਗ ਪਾਏ ਨਾਮ ਨਿਧਾਨ ਨਾਨਕ ਸਾਧੂ ਕੇ ਕੁਰਬਾਨ ਸਾਧ ਕੇ ਸੰਗ ਸਭ ਕੁਲ ਉਧਾਰੇ ਸਾਧ ਸੰਗ ਸਾਜਨ ਮੀਤ ਸਾਧ ਸੰਗ ਸਾਜਨ ਮੀਤ ਕੁਟੁੰਬ ਨਿਸਤਾਰੇ ਸਾਧੂ ਕੇ ਸੰਗ ਸੋ ਧਨ ਪਾਵੇ ਸਾ ਜਿਸ ਧਨ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵਰਸਾਵੇ ਸਾਧ ਸੰਗ ਧਰਮ ਰਾਏ ਕਰੇ ਸੇਵਾ ਸਾਧ ਕੇ ਸੰਗ ਸੋਭਾ ਸੁਰਦੇਵਾ ਸਾਧੂ ਕੇ ਸੰਗ ਪਾਪ ਪਲਾਇਨ ਸਾਧ ਸੰਗ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਗੁਣ ਗਾਇਨ ਸਾਧ ਕੇ ਸੰਗ ਸਰਬ ਥਾਨ ਗਮ ਨਾਨਕ ਸਾਧ ਕੇ ਸੰਗ ਸਫਲ ਜਨਮ ਸਾਧ ਕੇ ਸੰਗ ਨਹੀਂ ਕਛ ਕਾਲ ਦਰਸ਼ਨ ਭੇਟਤ ਹੋਤ ਨਿਹਾਲ ਸਾਧ ਕੇ ਸੰਗ ਕਲੁਖਤ ਹਰੇ ਸਾਧ ਕੇ ਸੰਗ ਨਰਕ ਪਰ ਹਰੇ ਸਾਧ ਕੇ ਸੰਗ ਨੀਹਾਂ ਉਹਾਂ ਸੋਹਿਲਾ ਸਾਧ ਸੰਗ ਵਿਛਰਤ ਹਰ ਮੇਲਾ ਜੋ ਇੱਛੇ ਸੋਈ ਫਲ ਪਾਵੇ ਸਾਧ ਕੇ ਸੰਗ ਨਾ ਬਿਰਥਾ ਜਾਵੇ ਸਪਾਰਵਨ ਸਾਧ ਰਿਤ ਬਸੇ ਨਾਨਕ ਉਗਰੇ ਸਾਧ ਸੁਣ ਵਸੇ ਸਾਧ ਕੇ ਸੰਗ ਸੁਨੋ ਹਰ ਨਾਉ ਸਾਧ ਸੰਗ ਹਰ ਕੀ ਗੁਣ ਗਾਓ ਸਾਧ ਕੇ ਸੰਗ ਨਾ ਮੰਤੀ ਵਿਸਰੇ ਸਾਧ ਸੰਗ ਸਰ ਪਰ ਨਿਸਤਰੇ ਸਾਧ ਕੇ ਸੰਗ ਲੱਗੇ ਪਰ ਮਿੱਠਾ ਸਾਧੂ ਕੇ ਸੰਗ ਘੜ ਘੜ ਡੀਠਾ ਸਾਧ ਸੰਗ ਪਏ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਪਈ ਹਮਾਰੀ ਸਾਧ ਕੇ ਸੰਗ ਮਿਟੇ ਸਭ ਰੋਗ ਸਾ ਨਾਨਕ ਸਾਧ ਪੇਟੇ ਸੰਜੋਗ ਸਾਧ ਕੀ ਮਹਿਮਾ ਵੇਦ ਨਾ ਜਾਣੇ ਜੇਤਾ ਸੁਨੇ ਤੇਤਾ ਬਖਿਆਨੇ ਸਾਧਗੀ ਉਪਮਾ ਤੇ ਗੁਣ ਤੇ ਦੂਰ ਸਾਧਗੀ ਉਪਮਾ ਰਹੀ ਭਰਪੂਰ ਸਾਧਗੀ ਸੋਭਾ ਕਾ ਨਾ ਹੀ ਅੰਤ ਸਾਧਗੀ ਸੋਭਾ ਸਦਾ ਬੇਅੰਤ ਸਾਧਗੀ ਸੋਭਾ ਮੂਸਤੇ ਉੱਚੀ ਸਾਧਗੀ ਸੋਭਾ ਮੂਸਤੇ ਮੂਚੀ ਸਾਧਗੀ ਸੋਭਾ ਸਾਧ ਬਨ ਆਈ ਨਾਨਕ ਸਾਧ ਦਾ ਭੇਦ ਨ ਪਾਈ ਸਲੋਕ ਮਨ ਸਾਚਾ ਮੁਖ ਸਾਚਾ ਸੋਏ ਅਵਰ ਨਾ ਫੇਖੇ ਏਕਸ ਬਿਨ ਕੋਏ ਨਾਨਕ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਹੋਏ ਅਸ਼ਟਪਦੀ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਸਦਾ ਨਿਰਲੇਪ ਜੈਸੇ ਜਲ ਮੈਂ ਕਮਲ ਅਲੇਪ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਸਦਾ ਨਿਰਦੋਖ ਜੈਸੇ ਸੂਰ ਸਰਬ ਕੋ ਸੁਖ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਸਮਾਨ
जैसे राजरंग को लागे तुल पवान ब्रह्म ज्ञानी कहती है एक जीव बसदा को खुद को चंदन लेप ब्रह्म ज्ञानी का ए गुनाओ नानक जीव पावक का सह स्वभाव ब्रह्म ज्ञानी निर्मल ते निर्मला जैसे मैं न लागे जला ब्रह्म ज्ञानी के मन हो प्रकाश जैसे तरु पराकाश ब्रह्म ज्ञानी के मित्र सत्र समान ब्रह्म ज्ञानी के नहीं अभिमान ब्रह्म ज्ञानी ऊंचते ऊंचा मन अपने सब ते नीचा ब्रह्म ज्ञानी से जिन पे नानक जिन प्रभु आप करे ब्रह्म ज्ञानी सगल कीरीना ब्रह्म ज्ञानी सगल कीरीना आत्मरस ब्रह्म ज्ञानी चीना ब्रह्म ज्ञानी की सब ऊपर माया ब्रह्म ज्ञानी ते कछ बुराना पया ब्रह्म ज्ञानी सदा समदर्शी ब्रह्म ज्ञानी की दृष्ट अमृत बरसी ब्रह्म ज्ञानी बंधन ते मुक्ता ब्रह्म ज्ञानी की निर्मल जुगता ब्रह्म ज्ञानी का भोजन ज्ञान नानक ब्रह्म ज्ञानी का ब्रह्म ध्यान ब्रह्म ज्ञानी एक उपरास ब्रह्म ज्ञानी का नहीं विनाश ब्रह्म ज्ञानी के गरीबी समाहा ब्रह्म ज्ञानी पर उपकार उमाहा ब्रह्म ज्ञानी कह ना ही धंधा ब्रह्म ज्ञानी ली तावत बंदा ब्रह्म ज्ञानी कह हो सो पला ब्रह्म ज्ञानी सफल पला ब्रह्म ज्ञानी संग सगल ब्रह्म ज्ञानी संग सगल उदाहर नानक ब्रह्म ज्ञानी जप सगल संसार ब्रह्म ज्ञानी के एक रंग ब्रह्म ज्ञानी के वसै प्रभु संग ब्रह्म ज्ञानी के नाम आधार ब्रह्म ज्ञानी के नाम परवार ब्रह्म ज्ञानी सदा सत जागत ब्रह्म ज्ञानी अंगू त्यागत ब्रह्म ज्ञानी के मन परमानंद ब्रह्म ज्ञानी के कर सदा आनंद ब्रह्म ज्ञानी सुख सहज निवास ब्रह्म ज्ञानी सुख सहज निवास नानक ब्रह्म ज्ञानी का नहीं विनाश ब्रह्म ज्ञानी ब्रह्म का वेता ब्रह्म ज्ञानी एक रंग एक संग हेता ब्रह्म ज्ञानी के हो अचिंत ब्रह्म ज्ञानी का निर्मल मंत्र ब्रह्म ज्ञानी जिस करे प्रभ आप ब्रह्म ज्ञानी का बड़ प्रता ब्रह्म ज्ञानी का दर्श बड़ भागी पाइये ब्रह्म ज्ञानी को बल बल जाइये ब्रह्म ज्ञानी को खोजा महेश्वर नानक ब्रह्म ज्ञानी आप परमेश्वर ब्रह्म ज्ञानी की कीमत ना है ब्रह्म ज्ञानी के सगल मन माहे ब्रह्म ज्ञानी का कौन जाने फेरे ब्रह्म ज्ञानी को सदा देश ब्रह्म ज्ञानी कथया न जा ब्रह्म ज्ञानी का कथया न जाए दाखिर ब्रह्म ज्ञानी सर्व का ठाकुर ब्रह्म ज्ञानी कीमित कौन बखाने ब्रह्म ज्ञानी की गत ब्रह्म ज्ञानी जाने ब्रह्म ज्ञानी का अंत न पार नानक ब्रह्म ज्ञानी को सदा नमस्कार ब्रह्म ज्ञानी सब सृष्टि का कर्ता ब्रह्म ज्ञानी सदजीव नहीं मरता ब्रह्म ज्ञानी मुकुट जुगत जी का दाता ब्रह्म ज्ञानी पूर्ण पुरुष विधाता ब्रह्म ज्ञानी अनंत का नाथ ब्रह्म ज्ञानी का सब ऊपर हाथ ब्रह्म ज्ञानी का सगलाकार ब्रह्म ज्ञानी आप निरंकार ब्रह्म ज्ञानी से शोभा ब्रह्म ज्ञानी बनी नानक ब्रह्म ज्ञानी सर्व का धनी सलोक उतारे जो अंतर नाम सर्व में पिख है भगवान निमक निमक ठाकुर नमस्कार नानक ओह परस सगल निस्तार है अष्टपदी मिथ्या नाहि रसना परस मन में प्रीत निरंजन तरस पर त्रिया रूप न पिख नेत्र प्रसाद की टहल संसंग हेत करण न सुने कहो कि निंदा सब ते जाने आपस को मंदा गुरु प्रसाद विख्या पर हरे मन की वासना मनते करे सो इंद्रिय जित पंच लोकते रहत नानक कोट में देखो ऐसा परस वैष्णो सो जिस ऊपर सो प्रसन्न विष्णु की माया ते हुए पहन कर्म कर पवे कर्म इस वैष्णो का निर्मल तरम काहू फल की इच्छा नहीं वाचे केवल भगत कीर्तन संग्राचे मन तन अंतर सिमरन गोपाल सब ऊपर होवत कृपाल आप निर्णय अवरे नाम जो पावे नानक हो वैष्णो परम गत पावे भगवती भगवंत भगत का रंग सगल त्यागे दुष्ट का संग मनते बिनसे सगला परम कर पूजे सगल पार ब्रह्म साध संग पापा मलक होवे तिस भगवती कीमत उत्तम होवे भगवंत की ठहल करे नितनीत मन तन अर्पे विसन परीत हर के चरण हृदय बसावे नानक ऐसा भगवती भगवंत को पावे सो पंडित जो मन पर भोते है राम नाम आत्म में सोते राम नाम सार रस पीवे उस पंडित के उदय जग जीवे हर की कथा हृदय बसावे सो पंडित फिर जो न आवे वेद पुराण सिमरत पूजे मूल सुखम में जाने अस्थूल जो वर्णा को दे उपदेश नानक उस पंडित को सदा आदेश बीज मंत्र सर्व को ज्ञान जो वर्णा में जपे को नाम जो जो जपे तिसकी गत होए साध संग पावे जन कोई कर कृपा अंतर उतारे पस प्रेत मुगध पात्र को उतारे सर्व रोका उकद नाम कल्याण रूप मंगल गुण काम कल्याण रूप मंगल गुण काम काहु जुगत की देना पाइये तरम नानक तिस मिले जिस लिखया तोर करम जिसके मन पार ब्रह्म का निवास तिसका नाम सत रामदास आत्म राम तिस नदरी आया दास दसम तन पाए तिन पाया सदा निकट निकट हर जान सो राह दरगह प्रवान अपने दास को आप कृपा करे तिस दास को सब सोजी परे सगल संग आत्म उदास
ऐसी जीवत नानक राम दास प्रभु की आज्ञा अतम हितावे जीवन मुकत सो कहावे तैसा हरख तैसा उसो सदा आनंद तह नाहि वियोग तैसा सुग्रम तैसी उस माटी तैसा अमृत तैसी बिखाटी तैसा मान तैसा अभिमान तैसा रंग तैसा राजान जो वरताय साय जुगत नानक ओ पुरख ये जीवन मुकत पार ब्रह्म के सगले ठाओ जित जित कर राखे तैसा तिन नाओ आपे करन करावन जोग प्रभु पावे सोई फुन होग पसरियो आप होय अनंत रंग लखे न जाए पार ब्रह्म के रंग जैसे मत दे तैसा प्रगास पार ब्रह्म कथा अविनाश सदा सदा सदा दयाल सिमर सिमर नानक पहि निहाल सलोक उस्तुत करे अनेक जन अंत न पारा वार नानक रचना प्रभु रचि बहुविध अनेक प्रकार अष्टपदी कई कोट होए पुजारी कई कोट आचार व्यवहारी कई कोट पहि तीर्थ वासी कई कोट बन प्रमय उदासी कई कोट वेद के स्रोते कई कोट तपी स्रोते कई कोट आत्म ध्यान तारे कई कोट कब का पिछारे कई कोट नव तन नाम त्यावे नानक करते का अंत न पावे कई कोट पहि अभिमानी कई कोट अंध अज्ञानी कई कोट कृपन कठोर कई कोट अपग आत्म निकोर कई कोट पर दर पुहिरे कई कोट पर दुख न करे कई कोट माया श्रम माहे कई कोट परदेश परमाए जित जित लावो तित तित लगना नानक करते की जाने करता रचना कई कोट सिद्ध जति जोगी कई कोट राजे रस भोगी कई कोट पंखी सर्प उपाय कई कोट पात्र बिरख ने बजाय कई कोट पवन पानी वैसंतर कई कोट देश भूमंडल कई कोट सशियर सूर नक्षत्र कई कोट देव दानव इंद्र सिर छत्र सगल समग्री अपने सूर तारे नानक जी जिस पावे तिस तिस निस्तारे कई कोट राज स्थान सातक कई कोट वेद पुराण सिमरत अर्थशास्त्र कई कोट किए रतन समुद्र कई कोट नाना प्रकार जंत कई कोट किए चिरजीवे कई कोट गिरी मेर सिवरन सुवरन थी वे कई कोट जख किन्नर पिसाच कई कोट भूत प्रेत सुकर मृगाच सब ते नेरे सब होते दूर नानक आप अलिप्त है भरपूर कई कोट पाताल के वासी कई कोट नरक सुरग निवासी कई कोट जन्मे जीवे मरे कई कोट बहुजोनी फिरे कई कोट बैठे ते ही खाए कई कोट काले तक पाए कई कोट किए धनवंत कई कोट माया मैं चिंत जय जय पाणा तह तह रखे नानक सब किस प्रभु के हाथे कई कोट

ਸਭ ਤੇ ਆਪ ਜਾਣੈ ਬਲਵੰਤ, ਕਿਨ ਮੈਂ ਹੋਈ ਜਾਏ ਭਸਮੰਤ। ਧਰਮ ਰਾਏ ਤਿਸ ਕਰੇ ਕੁਆਰੀ,

राष्ट्रपदी संत कै दुखन यार जा कटे संत कै दुखन जम ते नहीं छुटे संत कै दुखन सुख सब जाए संत कै दुखन नरक मह पाए संत कै दुखन मत होए मलीन संत कै दुखन सोभा तेहीन संत के हते को रखे न कोए संत कै दुखन थान भ्रष्ट होए संत किरपाल कृपा जी करै नानक संत संग निंदक भी तरै संत के

पूछ लै। संत के दुखन तेज सब जाए, संत के दुखन नीच नीच आए। संत दुखी का थाव को नाहे, नानक संत पावे ताउ पी गत पाहे।

नाना पे करे एक रंग नाना बिद किनो विस्तार प्रभ बिनासी कंकार नाना चलत करे किन माहि पूरहे ओ पूरन सब ठाए नाना बिद कर बनत बनाई अपनी कीमत आपे पाई।

गत हुए आप सत किया सब सत आपे जाने अपनी मित गत जिसके से सुकर्ण हार अवर न बूझ करत विचार करते कि मित न जाने किया नानक जो तिस पावे सो वर्तिया बिस्मन बिस्म पे बिस्मात जिन बुझ्या तिस आया स्वाद प्रभ के रंग राज जन

पूजनहार को सत सब होए, नानक सत सत प्रभ सोए, सत स्वरूप हृदय जिन मान्या, करन करावन तिन मूल पहचाने।

पूछे भूजन हार विपेक, नारायण मिले नानक एक। ठाकुर का सेवक आज्ञाकारी, ठाकुर का सेवक सदा पुजारी। ठाकुर के सेवक के मन प्रतीत, ठाकुर के सेवक की निर्मल रीत।

समारे, अपने जन का पर्दा ढाके, अपने सेवक की सर पर रखे, अपने दास को दे वडाई, अपने सेवक को नाम जपाई, अपने सेवक की

जस कर कोट लखे जिसका सांस न काटते आप ताको रखत दे कर हाथ मानस जतन करत मोपात तिसके कर्तव्य बिरते जात मारे न रखे अवर ना को।

अवर से आनप सगली चाड़, तिजन की तू सेवा लाग। आवन जान ना होवी तेरा, नानक तिजन के

तिसकै संग सिख उदरे नानक हर गुण गाओ अष्टपदी। सतगुर सिख की करे प्रतपाल सेवक को गुर सदा दयाल सिख की गुर दुर मत मल हिरे।

सुनकर बचन कर आगाने मन संतोख आत्म पतिया ने पूरा गुर अख्यो जाका मंत्र अमृत दृष्ट पे।

कोई अमृत पीवे अमर सो होए। उस पुरख का नाही कदे विनाश जाके मन प्रगटे गुणतास। आठ पहर

साजन संत करो एहो काम, आन त्याग जपो हर नाम, सिमर सिमर सिमर सुख पावो, आप जपो अवरह नाम जपावो, भगत पाए तरिय संसार, बिन भक्ति तन होसी चार, सर्व कल्याण सु

जब होवत प्रभ केवल तनी, तब बंद मुकत को किसको गनी। जब एक कहर अगम अपार, तब नरग सुर्ग को कौन अवतार। जब निर्गुण प्रभ सहज सुभाई, तब शिव सकत कहो कित ठाई।

अपना सी सुख अपन आसन, तय जन्म मरण को कहाँ विनाशन। जब पूरन करता प्रभ सोए, तब जम की त्रास कहो किस होए। जब अवगत अगोचर प्रभ एका, तब चित्रगुप्त किस पूछत लेखा। जब नाथ निरंजन अगोचर अगादे, तब कौन छुटे कौन बंधन बाधे। आपन आप

जन पाए सो समदर्शी तत्का बिता नानक सगल शिष्य का जीता जी जंत्र सबता के हाथ दीन दयाल अनाथ को नाथ जिस राख तिस कोई न मारे सो मुआ जिस मनो बिसारे तिस तज अवर कहाँ को जाए सब सिर एक निरंजन राय जी के जुगत जा कै सब हाथ अंतर बाहर जानो साथ गुण निधान बेअंत अपार नानक दास।

नानक बहु नया वह जाए, तिसते दूर कहाँ को जाए, उबरे राखन हार ते आए, निरपो जपे सगल पौ मिटे, प्रभ कृपा ते प्राणी छुटे, जिस प्रभ राखे तिस नाही दुख, नाम जपत मन होवत सुख।

कार्य पूरा मत पूरी अमृत जाके दृष्ट दर्शन बेकद उदृत श्रेष्ठ चरण कमल जाके अनूप सफल दर्शन सुंदर हर रूप तन सेवा सेवक परवान अंतर जामी पुरख प्रधान जिस मन बसे सो होत निहाल ताके निकट न आवत का।

नानक मन परगास अष्टपदी संत संग अंतर प्रभ डीटा नाम प्रभु का लागा मीठा सगल समग्री कसकट माहे अनेक रंग नाना दिष्टा है नौनिद अमृत प्रभ का नाम देही मैं इसका विश्राम सुन समाद अनत तैनात कह न जाय चर बिस्मात तिन देख्या जिस आप दिखाए नानक तिस जन सो जी पाए सो अंतर सो बाहर अनंत कट कट व्याप रहया भगवंत तरण माहे आकाश प्याल सर्व लोग पूरन प्रतपाल बंतन पर्वत है पार ब्रह्म जैसी आज्ञा तैसा कर।

संत जना का पेखन सब ब्रह्म, संत जना कै हृदय सब धर्म, संत जना सुने सुब बचन, सर्वव्यापी राम संग रचन, जिन जाता दिस की एह रहत, सत बचन साधु सब कहत।

किय सब सत तिस प्रभते सगली उत्पत तिस पावैता करे विस्तार तिस पावैता एकंकार अनिकला लखी नह जाय जिस पावै तिस लय मिलाय कवन निकट कम कहिए दूर अपे आपा परपूर अंतर्गत जिस आप जनाए नानक तिस जन आप बुझाए सर्व भूत अपरतारा सर्व नैन अपेखनहारा सगल समग्री जाका तनाया अपन जस आप ही सुना आवन जान खेल बनाया आज्ञाकारी की नी माया सबके मध अलिप्त रहे जो किश कहना सो आपे कहे आज्ञा आवे आज्ञा जाए नानक जा पावे तले समाए इससे होए सुना ही बुरा और कहूं कि ने कश करा आप लाकर तूत अतनी की अपे जाने अपने जी की आप साच तारी सब साच ओत पोत आपन संग राज ताकि गतमित कही न जाए दूसर होए तसो जी पाए इसका किया सब परवान गुर प्रसाद नानक हो जान जो जाने तिसदा सुख होए आप मिलाए लय प्रभ सोए ओ तनवंत कुलवंत पतवंत जीवन मुकत जिस हृदय भगवंत तन तन तन जन आया जिस प्रसाद सब जगत तराया जन आवन का इह सुआ जन कै संचित आवे ना।

गुण गाओ अष्टपदी पूरे गुर का सुन उपदेश पार ब्रह्म निकट कर पे सास सास सिमरो गोविंद मन अंतर की उतरे चिन्ह आस अनित त्यागो तरंग संत।

पूरन कृपा सिमर सिमर नाम बारंबार नानक जी का इन्हें आधार उत्तम सलोक साध के बचन अमलीक लाल एह रतन सुनत कमावत होत उधार आप तरह लोक निस्तार सफल जीवन सफलता का संग जाके मन लागा हर रंग जय जय शब्द अनाद वा जय सुन सुन अनद करे प्रभु।

अमृत नाम सात संग लैन सुप्रसन्न पय गुरुदेव पूरन होई सेवक के सेव आल जंजाल विकार ते रहते राम नाम सुन रसना कहते कर प्रसाद दया प्रभु तारी नानक ने भी खेप हमारी प्रभ की उस्तत करो संत मीत सावधान एकाग्रचित सुख मन सहज गोविंद गुण नाम जिस मन बसे सो होत निदान सर्व इच्छा ताकि पूरन होए प्रदान पुरख प्रगट सब लोए सब ते ऊंच पाए स्थान बहर न होवे आवन जान हर तन खाट चले जन सोए नानक जिसे प्राप्त होए खेम शांत रिद नवनिद बुद्ध ज्ञान सर्व तय सिद्ध

अमूल निशान, अमूल कर्म, अमूल पुरमान, अमूलो अमूल आख्या ना जाए, आख आख रहे लिव लाए, अख है वेद पाठ पुराण, अख है पढ़े करह वखियान, अख है बरमे, अख है इंद, अख है गोपी तै गोविंद, अख है ईसर, अख है सिद्ध, अख है केते कीते बुद्ध, अख है दानव, अख है देव, अख है सुर नर मुन जन सेव, केते अख है अखण पाहे, केते कह कह उठ उठ जाहे, एते कीते होर करहे ता आख न सकहे केई के, जेवड पावे तेवड होए, नानक जाने साचा सोए, जे को आखै बोल बिगाड़, ता लिखिए सिर गावारा गावार, सो दर केहा सो कर केहा, जित बह सर्ब संभाले, वाजे नाद अनेक असंखा, केते वावन हारे, केते राग परी स्यों कहियन, केते गावन हारे, गावे तोहनो पौन पानी बैसंतर, गावे राजा धर्म दुआरे, गावे चित गुप्त लिख जाना है, लिख लिख धर्म विचारे, गावे ईश्वर वर्मा देवी सोहन सदा सवारे, गावे इंद इंदा सुन बैठे देवत्या दर नाले, गावे सिद्ध समाधि अंदर गावन साध विचारे, गावन जती सती संतोखी गावह वीर करारे, गावन पंडित पढ़न रखी सर जुग जुग वेदा नाले, गावह मोहनिया मन मोहन सुरगा मच पयाले, गावन रतन उपाय तेरे अठसठ तीर्थ नाले, गावह जोध महाबल सूरा गावह खानी चारे, गावह खंड मंडल वर पंडा कर कर रखे तारे, सही तुदनो गावह जो तुद पावन रते तेरे भगत रसाले, होर केते गावन से मैं चित ना आवन, नानक क्या विचारे, सोई सोई सदा सच साहिब साचा साची नाई, है पी होसी जाय न जासी रचना जिन रचाई, रंगी रंगी पाती कर कर जिनसी माया जिन उपाई, कर कर वेखै कीता अपना जिव तिस दी वडियाई, जो तिस भावै सोई करसी हुक्म न करना जाई, सो पात साहु सहा पात साहिब नानक रहन रजाई, मुंदा संतोख सरम पत झोली ध्यान की करह विभूत, खिंथा काल कुआरी काया जुगत डंडा प्रतीत, आई पंथी सगल जमाती मन जीत जग जीत, आदेश तिस आदेश आद अनिल अनाद अनाहत जुग जुग एको वेस, भुगत ज्ञान दया भंडारण घट घट वज है नाद, आप नाथ नाथी सब जाकी रिद सिद्ध अवरा साध, संजोग विजोग दोयकार चलाव है लेखे आव है पाग, आदेश तिस आदेश आद अनिल अनाद अनाहत जुग जुग एको वेस, एका माई जुगत व्याई तिन चेले परवान, एक संसारी एक भंडारी एक लाए दीवान, जिव तिस भावै तिव चलावै जिव होवै फुरमान, ओ वेखै ओ ना नदर ना आवै बहताए हो विडान, आदेश तिस आदेश आद अनिल अनाद अनाहत जुग जुग एको वेस, आसन लोए लोए भंडार जो किछ पाया सो एका वार, कर कर वेख सिरजनहार, नानक सच्चे की साची कार, आदेश तिस आदेश आद अनिल अनाद अनाहत जुग जुग एको वेस, एक दूजी भू लख होहे लख होवह लख वीस, लख लख गेड़ा आखी है एक नाम जगदीस, एत राहे पत पवड़िया चढ़िया होए इक्कीस, सुन गल्ला आकाश की कीटा आई रीस, नानक नदरी पाईया कूड़ी कूड़ ठीस, आखण जोर चुपै नह जोर जोर नाम गण देण ना जोर, जोर ना जीवन मरण नह जोर, जोर ना राज माल मन सोर, जोर ना सुरती ज्ञान विचार, जोर ना जुगती छुट्टै संसार।

गए मशक्कत काल, नानक ते मुख उजले केती छुट्टी नाल, जिनी नाम ते आया गए।

ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇੱਕ ਓਅੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਜਾਪ ਸ੍ਰੀ ਮੁਖ ਵਾਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦਸਵੀਂ ਛਪੈ ਛੰਦ ਤੁਅ ਪ੍ਰਸਾਦ ਚੱਕਰ ਚਿਹਨ ਅਰ ਬਰਨ ਜਾਤ ਅਰ ਪਾਤ ਨਹਿੰ ਜਿਹੇ ਰੂਪ ਰੰਗ ਅਰ ਰੇਖ ਭੇਖ ਕੋ ਕਹਿ ਨਾ ਸਕਤ ਕਿਹੇ ਅਚਲ ਮੂਰਤ ਅਨੁਭਵ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਅਮਿਤੋਜ ਕਹਿ ਜੈ ਕੋਟ ਇੰਦ੍ਰ ਇੰਦਰਾਣ ਸ਼ਾਹ ਸ਼ਾਹਾਨ ਗਣਿਜੈ ਤ੍ਰਿਭਵਨ ਮਹੀਪ ਸੁਰ ਨਰ ਅਸੁਰ ਨੇਤ ਨਿਤ ਬਨ ਤ੍ਰਿਣ ਕਹਿਤ ਤੁ ਸਰਬ ਨਾਮ ਕਥੈ ਕਵਨ ਕਰਮ ਨਾਮ ਪਰਨਤ ਸੁਮਤ ਭੁਜੰਗ ਪਰਿਆਤ ਛੰਦ ਨਮਸਤਵੰ ਅਕਾਲੇ ਨਮਸਤਵੰ ਕਿਰਪਾਲੇ ਨਮਸਤੰ ਅਰੂਪੇ ਨਮਸਤੰ ਅਨੂਪੇ ਨਮਸਤੰ ਅਪੇਖੇ ਨਮਸਤੰ ਅਲੇਖੇ ਨਮਸਤੰ ਅਕਾਏ ਨਮਸਤੰ ਅਜਾਏ ਨਮਸਤੰ ਅਗੰਜੇ ਨਮਸਤੰ ਅਪੰਜੇ ਨਮਸਤੰ ਅਨਾਮੇ ਨਮਸਤੰ ਅਠਾਮੇ ਨਮਸਤੰ ਅਕਰਮੰ ਨਮਸਤੰ ਅਧਰਮੰ ਨਮਸਤੰ ਅਨਾਮੰ ਨਮਸਤੰ ਅਤਾਮੰ ਨਮਸਤੰ ਅਜੀਤੇ ਨਮਸਤੰ ਅਪੀਤੇ ਨਮਸਤੰ ਅਬਾਹੇ ਨਮਸਤੰ ਅਡਾਹੇ ਨਮਸਤੰ ਅਨੀਲੇ ਨਮਸਤੰ ਅਨਾਦੇ ਨਮਸਤੰ ਅਚੇਤੇ ਨਮਸਤੰ ਅਗਾਧੇ ਨਮਸਤੰ ਅਗੰਜੇ ਨਮਸਤੰ ਅਪੰਜੇ ਨਮਸਤੰ ਉਦਾਰੇ ਨਮਸਤੰ ਅਪਾਰੇ ਨਮਸਤੰ ਸੋ ਏਕੈ ਨਮਸਤੰ ਅਨੇਕੈ ਨਮਸਤੰ ਅਭੂਤੇ ਨਮਸਤੰ ਅਜੂਪੇ ਨਮਸਤੰ ਨਿਰਕਰਮੇ ਨਮਸਤੰ ਨਿਰਪਰਮੇ ਨਮਸਤੰ ਨਿਰਦੇਸੇ ਨਮਸਤੰ ਨਿਰਪੇਸੇ ਨਮਸਤੰ ਨਿਰਨਾਮੇ ਨਮਸਤੰ ਨਿਰਕਾਮੇ ਨਮਸਤੰ ਨਿਰਦਾਤੇ ਨਮਸਤੰ ਨਿਰਗਾਤੇ ਨਮਸਤੰ ਨਿਰਧੂਤੇ ਨਮਸਤੰ ਅਭੂਤੇ ਨਮਸਤੰ ਅਲੋਕੇ ਨਮਸਤੰ ਅਸੋਕੇ ਨਮਸਤੰ ਨਿਰਤਾਪੇ ਨਮਸਤੰ ਅਥਾਪੇ ਨਮਸਤੰ ਤ੍ਰਿਮਾਣੇ ਨਮਸਤੰ ਨਿਧਾਨੇ ਨਮਸਤੰ ਅਗਾਹੇ ਨਮਸਤੰ ਅਬਾਹੇ ਨਮਸਤੰ ਤ੍ਰਿਵਰਗੇ ਨਮਸਤੰ ਅਸਰਗੇ ਨਮਸਤੰ ਪ੍ਰਭੋਗੇ ਨਮਸਤੰ ਸੋਜੋਗੇ ਨਮਸਤੰ ਅਰੰਗੇ ਨਮਸਤੰ ਅਪੰਗੇ ਨਮਸਤੰ ਅਗਮੇ ਨਮਸਤਸਤਰਮੇ ਨਮਸਤੰ ਜਲਾਸਰੇ ਨਮਸਤੰ ਨਿਰਾਸਰੇ ਨਮਸਤੰ ਅਜਾਤੇ ਨਮਸਤੰ ਅਪਾਤੇ ਨਮਸਤੰ ਅਬਜਬੇ ਨਮਸਤਸਤ ਅਜਬੇ ਅਦੇ ਸੰਗ ਅਦੇਸੇ ਨਮਸਤੰ ਅਪੇਸੇ ਨਮਸਤੰ ਨਿਰਧਾਮੇ ਨਮਸਤੰ ਨਿਰਭਾਮੇ ਨਮੋ ਸਰਬ ਕਾਲੇ ਨਮੋ ਸਰਬ ਦਿਆਲੇ ਨਮੋ ਸਰਬ ਰੂਪੇ ਨਮੋ ਸਰਬ ਭੂਪੇ ਨਮੋ ਸਰਬ ਖਾਪੇ ਨਮੋ ਸਰਬ ਥਾਪੇ ਨਮੋ ਸਰਬ ਕਾਲੇ ਨਮੋ ਸਰਬ ਪਾਲੇ ਨਮਸਤਸਤ ਦੇਵੈ ਨਮਸਤੰ ਅਪੇਵੈ ਨਮਸਤੰ ਅਜਨਮੇ ਨਮਸਤੰ ਸੁਬਨਮੇ ਨਮੋ ਸਰਬ ਗੌਨੇ ਨਮੋ ਸਰਬ ਪੌਨੇ ਨਮੋ ਸਰਬ ਰੰਗੇ ਨਮੋ ਸਰਬ ਭੰਗੇ ਨਮੋ ਕਾਲ ਕਾਲੇ ਨਮਸਤਸਤ ਦਿਆਲੇ ਨਮਸਤੰ ਅਬਰਨੇ ਨਮਸਤੰ ਅਮਰਨੇ ਨਮਸਤੰ ਜਰਾਰੰਗ ਨਮਸਤੰ ਕ੍ਰਿਤਾਰੰਗ ਨਮੋ ਸਰਬ ਧੰਦੇ ਨਮੋ ਸਤ ਅਬੰਧੇ ਨਮਸਤੰ ਨਿਰਸਾਕੇ ਨਮਸਤੰ ਨਿਰਬਾਕੇ ਨਮਸਤੰ ਰਹੀਮੇ ਨਮਸਤੰ ਕਰੀਮੇ ਨਮਸਤੰ ਅਨੰਤੇ ਨਮਸਤੰ ਮਹੰਤੇ ਨਮਸਤਸਤ ਰਾਗੇ ਨਮਸਤੰ ਸੁਹਾਗੇ ਨਮੋ ਸਰਬ ਪੋਖ ਨਮੋ ਸਰਬ ਸੋਖੰ ਨਮੋ ਸਰਬ ਪੋਖੰ ਨਮੋ ਸਰਬ ਕਰਤਾ ਨਮੋ ਸਰਬ ਹਰਤਾ ਨਮੋ ਜੋਗ ਜੋਗੇ ਨਮੋ ਭੋਗ ਭੋਗੇ ਨਮੋ ਸਰਬ ਦਿਆਲੇ ਨਮੋ ਸਰਬ ਪਾਲੇ ਚਾਚਰੀ ਛੰਦ ਤੁਅ ਪ੍ਰਸਾਦ ਅਰੂਪ ਹੈ ਅਨੂਪ ਹੈ ਅਜੂ ਹੈ ਅਪੂ ਹੈ ਅਲੇਖ ਹੈ ਅਪੇਖ ਹੈ ਅਨਾਮ ਹੈ ਅਕਾਮ ਹੈ ਅਧੇ ਹੈ ਅਪੇ ਹੈ ਅਜੀਤ ਹੈ ਅਪੀਤ ਹੈ ਤ੍ਰਿਮਾਨ ਹੈ ਨਿਧਾਨ ਹੈ ਤ੍ਰਿਵਰਗ ਹੈ ਅਸਰਗ ਹੈ ਅਨੀਲ ਹੈ ਅਨਾਦ ਹੈ ਅਜੇ ਹੈ ਅਜਾਦ ਹੈ ਅਜਨਮ ਹੈ ਅਵਰਨ ਹੈ ਅਭੂਤ ਹੈ ਅਪਰਨ ਹੈ ਅਗੰਜ ਹੈ ਅਪੰਜ ਹੈ ਅਚੂਜ ਹੈ ਅਚੰਜ ਹੈ ਅਮੀਕ ਹੈ ਰਫੀਕ ਹੈ ਅਤੰਦ ਹੈ ਅਬੰਧ ਹੈ ਨਿਰਬੂਜ ਹੈ ਅਸੂਜ ਹੈ ਅਕਾਲ ਹੈ ਅਜਾਲ ਹੈ ਅਲਾਹ ਹੈ ਅਜਾਹ ਹੈ ਅਨੰਤ ਹੈ ਮਹੰਤ ਹੈ ਅਲੀਕ ਹੈ ਨਿਰਸ੍ਰੀਕ ਹੈ ਨਿਰਲੰਬ ਹੈ ਅਸੰਭ ਹੈ ਅਗਮ ਹੈ ਅਜਮ ਹੈ ਅਭੂਤ ਹੈ ਅਚੂਤ ਹੈ ਅਲੋਕ ਹੈ ਅਸੋਕ ਹੈ ਅਕਰਮ ਹੈ ਅਪਰਮ ਹੈ ਅਜੀਤ ਹੈ ਅਪੀਤ ਹੈ ਅਵਾਹ ਹੈ ਅਗਾਹ ਹੈ ਅਮਾਨ ਹੈ ਨਿਧਾਨ ਹੈ ਅਨੇਕ ਹੈ ਫਿਰ ਏਕ ਹੈ ਭੁਜੰਗ ਪ੍ਰਿਆਤ ਛੰਦ ਨਮੋ ਸਰਬਮਾਨੀ ਸਮਸਤੀ ਨਿਧਾਨੇ ਨਮੋ ਦੇਵ ਦੇਵੇ ਅਪੇਖੀ ਅਪੇਵੇ ਨਮੋ ਕਾਲ ਕਾਲੇ ਨਮੋ ਸਰਬ ਪਾਲੇ ਨਮੋ ਸਰਬ ਗੌਣੇ ਨਮੋ ਸਰਬ ਪੌਣੇ ਅਨੰਗੀ ਅਨਾਥੇ ਨਿਰਸੰਗੀ ਪਰਮਾਥੇ ਨਮੋ ਪਾਨ ਪਾਨੇ ਨਮੋ ਮਨ ਮਾਨੇ ਨਮੋ ਚੰਦਰ ਚੰਦਰੇ ਨਮੋ ਪਾਨ ਪਾਨੇ ਨਮੋ ਗੀਤ ਗੀਤੇ ਨਮੋ ਤਾਨ ਤਾਨੇ ਨਮੋ ਨਿਰਤ ਨਿਰਤੇ ਨਮੋ ਨਾਦ ਨਾਦੇ ਨਮੋ ਪਾਨ ਪਾਨੇ ਨਮੋ ਬਾਦ ਬਾਦੇ ਅਨੰਗੀ ਅਨਾਮੇ ਸਮਸਤੀ ਸਰੂਪੇ ਪ੍ਰਭੰਗੀ ਪਰਮਾਥੇ ਸਮਸਤੀ ਵਿਭੂਤੇ ਕਲੰਕ ਬਿਨਾਨੇ ਕਲੰਕੀ ਸਰੂਪੇ ਨਮੋ ਰਾਜ ਰਾਜੇਸ਼ਵਰਨ ਪਰਮ ਰੂਪੇ ਨਮੋ ਜੋਗ ਜੁਗੇਸ਼ਵਰੰ ਪਰਮ ਸਿੱਧੇ ਨਮੋ ਰਾਜ ਰਾਜੇਸ਼ਵਰੰ ਪਰਮ ਪ੍ਰਿਧੇ ਨਮੋ ਸ਼ਸਤ੍ਰ ਪਾਣੀ ਨਮੋ ਅਸਤ੍ਰਮਾਣੀ ਨਮੋ ਪਰਮ ਗਿਆਤਾ ਨਮੋ ਲੋਕ ਮਾਤਾ ਅਪੇਖੀ ਅਪਰਮੀ ਅਭੋਗੀ ਅਭੁਗਤੇ ਨਮੋ ਜੋਗ ਜੁਗੇਸ਼ਵਰੰ ਪਰਮ ਜੁਗਤੇ ਨਮੋ ਨਿਤ ਨਾਰਾਇਣੇ ਕਰੂਰ ਕਰਮੇ ਨਮੋ ਪ੍ਰੇਤ ਅਪ੍ਰੇਤ ਦੇਵੇ ਸੁਧਰਮੇ ਨਮੋ ਰੋਗ ਹਰਤਾ ਨਮੋ ਰਾਗ ਰੂਪੇ ਨਮੋ ਸ਼ਾਹ ਸ਼ਾਹੰ ਨਮੋ ਭੂ ਭੂਪੇ
नमो दान दाने नमो मान माने नमो रोग रोगे नमस्तं स्नानं नमो मंत्र मंत्रं नमो जंत्र जंत्रं नमो इष्ट इष्टे नमो तंत्र तंत्रं सदा सच्चिदानंद सर्वं प्रणासी अनूपे अरूपे समस्तुल निवासी सदा सिद्धदा बुद्धदा वृद्धकर्ता अधो ऊर्ध अर्धं अघं ओघहर्ता परं परं परमेश्वरं प्रोचपालं सदा सर्वदा सिद्धदाता दयालं अच्छेदीय पेदीयनामं अकामं समस्तो पराजी समस्तस्त तामं ते आजोर चाचरी छंद जले हैं थले हैं अपीत हैं अपे हैं प्रभु हैं अजू हैं अदेश हैं अपेश हैं कुजंग पर्याद छंद अगाधे अबाधे अनंदी स्वरूपे नमो सर्वमाने समस्ती निदाने नमस्त्वं निर्नाथे नमस्त्वं परमाथे नमस्त्वं अगंजे नमस्त्वं अपंजे नमस्त्वं अकाले नमस्त्वं अपाले नमो सर्वदेशे नमो सर्वपेशे नमो राजे राजे नमो साज साजे नमो साह साहे नमो माहमाहे नमो गीत गीते नमो प्रीत प्रीते नमो रोख रोखे नमो शोक शोखे नमो सर्व रोगे नमो सर्व भोगे नमो सर्व जीतं नमो सर्व पीतं नमो सर्व ज्ञानं नमो परमतानं नमो सर्व मंत्रं नमो सर्व यंत्रं नमो सर्व दृश्यं नमो सर्व कृष्णं नमो सर्व रंगे त्रिपंगी अनंगे नमो जीव जीवं नमो बीज बीजे अखिज्जे अपिज्जे समस्तं प्रसिज्जे कृपालं स्वरूपे कुकर्मं प्रणासी सदा सर्वदा रिद्ध सिद्धं निवासी चरपट छंद त्व प्रसाद अमृत कर्मे अमृत धर्मे अखल जोगे अचल पोगे अचल राजे अटल साजे अखल धर्मं अलख कर्मं सर्वं दाता सर्वं ज्ञाता सर्वं पाने सर्वं माने सर्वं प्राणं सर्वं त्राणं सर्वं पूगता सर्वं युक्ता सर्वं देवं सर्वं पेवं सर्वं काले सर्वं पाले रुआल छंद त्व प्रसाद आद रूप अनाद मूरत अजोन पुरख अपार सर्व मान त्रिमान देव अपेव आद उदार सर्व पालक सर्व कालक सर्व कोपुन काल जत्र तत्र विराज ही अवधूत रूप रिसाल नाम ठाम न जात जाकर रूप रंग न रेख आद पुरख उदार मूरत अजोन आद असेख देश और न पेश जाकर रूप रेख न राग जत्र तत्र दिशा विसा होय फैलियो अनुराग नाम काम विहीन पेखत ताम हूं नह जाहे सर्वमान सर्वत्रमान सदैव मानत ताहे एक मूरत अनेक दर्शन कीन रूप अनेक खेल खेल अखेल खेलन अंत को फिर एक देव पेव न जानही चिह वेद और कतेब रूप रंग न जात पात सो जानही कह जेब तात मात न जात जाकर जन्म मरण विहीन चक्र बकर फिर चत्र चक मानई पुरतीन लोक चौदह के बिख जग जाप ही जिह जाप आद देव अनाद मूरत थाप्यो सब जिह थाप परम रूप पुनीत मूरत पूरन पुरख अपार सर्व विश्व रच्यो स्वयं भव गण पंचन हार कालहीन कला संयुक्त अकाल पुरख अदेश धर्म ताम सो परम रहत अपूत अलख अपेस अंग राग न रंग जा कह जात पात न नाम गर्भ गंजन दुष्ट पंजन मुक्त दायक काम आप रूप अमीक अनुस्तत एक पुरख अवधूत गर्भ गंजन सर्व पंजन आद रूप असूत अंगहीन अपंग अनात्म एक पुरख अपार सर्व लायक सर्व कायक सर्व को प्रतपार सर्वघंता सर्वहंता सर्वते अर्पेख सर्वशास्त्र न जानही जिहि रूप रंग अरेख परम वेद पुराण जा कह नित पाखत नित कोर सिमृत पुराण शास्त्र नावई वह चित मधुभार छंद तो प्रसाद गुणगन उदार महिमा अपार आसन अपंग उपमा अनंग अनपौ प्रकाश निस्दिन अनास आजान बाह शाहन शाह राजान राजपानन पान देवान देन उप देवान देव उपमा महान इंद्रान इंद्र बालान बाल रंकान रंक कालान काल अनपूत अंग आभा अभंग गतमित अपार गुणगन उदार मुनगन प्रणाम निरपय निकाम अतदुत प्रचंड मित गत अखंड आलिस्य कर्म आदृश्य धर्म असर्वापर्णाढ्य अंडन बाढ़ चाची छंद त्व प्रसाद
गोविंदे मुकुंदे उदारे अपारे हरिंग करियंग निर्नामे अकामे पुजंग पर्यात छंद चत्र चक्र कर्ता चत्र चक्र हर्ता चत्र चक्र दाने चत्र चक्र जाने चत्र चक्रवर्ती चत्र चक्र परति चत्र चक्र पाले चत्र चक्र काले चत्र चक्र पासे चत्र चक्र वासे चत्र चक्र मान्य चत्र चक्र दान्य चाचरी छंद न सत्र न मित्र न परमंग न पित्र न कर्मंग न काय अजन्मंग अजाये न चित्र न मित्र परे हैं पवित्र पृथ्वी स अधिस अदृश अकृश भगवती छंद त्व प्रसाद कथते के आछिज देश के आ पिज पेश के आगंज कर्म के आ पंज परम के आ पिज लोक के आदित्य सोक के अवधभूत वर्ण के विभूत कर्ण इराजंग प्रभा है के तर्मंग तुजा है के आशोक वर्ण के सर्वा अपर्ण के जगतंग कृति है के छत्रंग छत्री है के ब्रह्मंग स्वरूप है के अनुपो अनूप है के आद अदेव है के आप अपेव है के चित्रंग विहीन है के एक अधीन है के रोजी रजा कर रही मैं रिहा के पाप बेअब है के गै भुल गैब है के अफूल गुनाह है के शाहन शाह है के कारण कुनिंद है के रोजी देहंद है के राजन के राजक रहीम है के कर्मं करीम है के सर्वं कली है के सर्वं दली है के सर्वत्र मान्य है के सर्वत्र जान्य है के सर्वत्र गौण है के सर्वत्र पौन है के सर्वत्र देश है के सर्वत्र पेश है के सर्वत्र राज है के सर्वत्र साज है के सर्वत्र दीन है के सर्वत्र लीन है के सर्वत्र जाहो के सर्वत्र पाहो के सर्वत्र देश है के सर्वत्र पेश है के सर्वत्र काल है के सर्वत्र पाल है के सर्वत्र हंता के सर्वत्र गंता के सर्वत्र पेखी के सर्वत्र पेखी के सर्वत्र काज है के सर्वत्र राज है के सर्वत्र सुख है के सर्वत्र भूख है के सर्वत्र त्राण है के सर्वत्र प्राण है के सर्वत्र देश है के सर्वत्र पेश है के सर्वत्र मन है सदैव प्रधान्य है के सर्वत्र जाप्य है के सर्वत्र थाप्य है के सर्वत्र पान है के सर्वत्र मान है के सर्वत्र इंद्र है के सर्वत्र चंद्र है के सर्वं कलीम है के परम फहीम है के आकल अलाम है के साहिब कलाम है के उसनल वजू है तमाम रुजू है हमेशा सलाम है सलीख सलीख हतमुदाम है गरीब उल शिकस्त है गरीब उल परस्त है बेलंद उल मकान है जमीन उल जमान है तमीज उल तमाम है रुजू उल निधान है हरीफ उल अजीम है रजाई की यकीन है अनेक उल तरंग है अपेद है अपंग है अजीज उल निवाज है गनीम उल खिराज है निरुक्त स्वरूप है त्रिमुक्त विभूत है प्रभुक्त प्रभा है सुदुक्त सुधा है सदैव स्वरूप है अपेदी अनूप है समस्तो पराज है सदा सर्वसाज है समस्तो सलाम है सदैव अकाम है निर्बाध स्वरूप है अगाध है अनूप है उवंग आद रूप है अनाद स्वरूप है अनंगी अनामे त्रिपंगी त्रिकामे त्रिभ्रगंग त्रिभादे अगंजे अगाधे सुभंग सर्व पागे सुसर्वा अनुरागे त्रिपुक्त स्वरूप है अचिज है अछूत है किनर कंग प्रणास है पृथुअल प्रवास है निरुक्त सदा निरुक्त प्रभा है सदैव सदा है विभुक्त स्वरूप है प्रयुक्त अनूप है निरुक्त सदा है विभुक्त प्रभा है अनुक्त स्वरूप है प्रयुक्त अनूप है चाचरी छंद अपंग है अनंग है अपेक है अलेख है अपर्म है अकर्म है अनाद है जुगाद है अजय है अभय है अपूत है अदूत है अनास है उदास है अतंध है अबंध है अपक्त हैं विरक्त हैं अनास हैं प्रकाश हैं निचिंत हैं सुनिंत हैं अलिख हैं अदिख हैं अलेख हैं अपेक हैं अडाह हैं अगाह हैं असंभ हैं अगम्भ हैं अनिल हैं अनाद हैं अनित हैं सुनित हैं अजात हैं अजाद हैं चरपट छंद तो प्रसाद सर्वंगहंता सर्वंगंता सर्वंख्याता सर्वंज्ञाता सर्वंहर्ता सर्वंकर्ता सर्वंग प्राणं सर्वंग त्राणं सर्वंग कर्मं सर्वंग धर्मं सर्वंग युक्ता सर्वंग मुक्ता रसावल छंद त्व प्रसाद नमो नरकनासे सदैवं प्रकाशे अनंगं स्वरूपे अपंगं विभूते परमात्म परमाते सदा सर्वसाथे अगाध स्वरूपे निर्बाध विभूते अनंगी अनामे त्रिपंगी त्रिकामे निरपंगी स्वरूपे सर्वंगी अनूपे न पोत्र न पुत्र न सत्र न मित्र न तात न मात न जात न पात साकं सरीक है अमितो अमीक है सदैव प्रभा है अजय है अजा है भगवती छंद तो प्रसाद के जाहर जहूर है के हाजर हजूर है हमें सुल सलाम है समस्तुल कलाम है के साहिब दिमाग है के हुस्न चराग है के कामल करीम है के राजक रहीम है के रोजी देहंद है के राजक रहिंद है करीमुल कमाल है के हुस्न जमाल है गनीमुल खिराज हैं गरीबुल निवाज हैं हरीफुल शिकन हैं हिरासुल फिकन हैं
कलंक प्रणास हैं, समस्तुल निवास हैं, अगंजुल गनीम हैं, रजायक रहीम हैं, समस्तुल जो वाह हैं के साहिब के राह हैं, के नरकंक प्रणास हैं, बहस्तुल निवास हैं, के सरबुल गवन हैं, हमें सुल रवन हैं, तमामुल तमीज हैं, समस्तुल अजीज हैं, परंग परम ईस हैं, समस्तुल अदीस हैं, अदेसुल अलेख हैं, अमेसुल अपेख हैं, जमीनुल जमा हैं, अमीकुल इमा हैं, करीमुल कमाल हैं, के जुर्रत जमाल हैं, के अचरंग प्रकाश हैं, के अमितो सुबास हैं, के अजब स्वरूप हैं, के अमितो विपूत हैं, के अमितो पसा हैं, के आत्म प्रवाह हैं, के अचलंग अनंग हैं, के अमितो अपंग हैं, मधुपार छंद तो प्रसाद मुन मन प्रणाम गुनगन मुदाम अर पर अगंज हर नर प्रभंज अनगन प्रणाम मुन मन सलाम हर नर अखंड पर नर अमंड अनुभव अनास मुन मन प्रकाश गुनगन प्रणाम जल थल मुदाम अंचिज अंग आसन अपंग उपमा पार गतमित उदार जल थल अमंड दिस विस अपंड जल थल महंत दिस विस बेअंत अनुभव अनास त्रित तर तुरास आजान बाहु एक सदाहु ओंकार आद कथनी अनाद खलखंड ख्याल गुरबर अकाल कर कर प्रणाम चित चरण नाम अंश जगात आज जनाबात अनचन जगात अनरंजबात अनटुट भंडार अनठट अपार आडीठ धर्म अत टीठ कर्म अनबरण अनंत दाता महंत हर बोल मना चंद त्व प्रसाद करुणालय है अरकालय है खलखंडन है महमंडन है जगतेश्वर है परमेश्वर है कल कारण है सर्व उबारण है कृत के तरण है जग के कर्ण है मनमान्य है जग जान्य है सर्वंकर है सर्वंकर है सर्व पासे है सर्वनाश्य है करुणाकर है विश्वंभर है सर्वेश्वर है जगतेश्वर है ब्रह्मंडस है खलखंडस है परते पर है करुणाकर है अजप्पा जप है अथप्पा थप है अकृता कृत है अमृता मृत है अमृता मृत है करुणा कृत है अकृता कृत है तरणी तृत है अमितेश्वर है परमेश्वर है अकृता कृत है अमृता मृत है अजपा कृत है अमृता मृत है नरनायक है खल कायक है विश्वंभर है करुणालय है निरपनायक है सर्वपायक है पावपंजन है अरगंजन है रिप्तापन है जप जापन है अकलंकृत है सर्वाकृत है कर्ता कर है हरता हर है परमात्म है सर्व आत्म है आत्मवस है जस के जस है कुजंग प्रयात छंद नमो सूर्य सूर्जे नमो चंद्र चंद्रे नमो राज राजे नमो इंद्र इंद्रे नमो अंधकारे नमो तेज तेजे नमो बृंद बृंदे नमो बीज बीजे नमो राज संग काम संग शांत रूपे नमो परम तत्तंग अतत्तंग स्वरूपे नमो जोग जोगे नमो ज्ञान ज्ञाने नमो मंत्र मंत्रे नमो ध्यान ध्याने नमो युद्ध युद्धे नमो ज्ञान ज्ञाने नमो पोज पोजे नमो पान पाने नमो कलह कर्ता नमो शांत रूपे नमो इंद्र इंद्रे अनादंग विभूते कलंकार रूपे अलंकार अलंके नमो आस आसे नमो बांक बंके अपंगी स्वरूपे अनंगी अनामे त्रिपंगी त्रिकाले अनंगी अकामे एक अचरी छंद अजय अलय अपह अभय अपू अजू अनास अकाश अगंज अपंज अलख अपख अकाल दयाल अलेख अपेख अनाम अकाम अगाह अडाह अनाथे प्रमाथे अजोनी अमोनी न रागे न रंगे न रूपे न रेखे अकर्मं अपरमं अगंजे अलेखे पुजंग पर्यात छंद नमस्तुल परनामे समस्तुल परनासे अगंजुल अनामे समस्तुल निवासे निकामं विपूते समस्तुल स्वरूपे कुकर्मं प्रणासी सुधर्मं विपूते सदा सच्चिदानंद सतरंग प्रणासी करेमुल कुनिंदा समस्तुल निवासी अजाय विपूते गजायब गनी में हरियंग करियंग करीमुल रही में चत्र चक्रवर्ती चत्र चक्र पुगते स्वयं भव सुभंग सर्वदा सर्वयुक्ते दुकालं प्रणासी दयालं स्वरूपे सदा अंग संगे अपंगं विपूते दुकालं प्रणासी दयालं स्वरूपे सदा अंग संगे अपंगं विपूते वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह।
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇੱਕ ਓਅੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦਸਵੀਂ ਤੋ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸਵਈਏ, ਸਰਾਵਕ ਸੁਧ ਸਮੂਹ ਸਿਧਾਨ ਕੇ, ਦੇਖ ਫਿਰਿਓ ਘਰ ਜੋਗ ਜਤੀ ਕੇ, ਸੂਰ ਸੁਰ ਅਰਦਨ ਸੁਧ ਸੁਦਾਦਕ ਸੰਤ ਸਮੂਹ ਅਨੇਕ ਮਤੀ ਕੇ, ਸਾਰੇ ਹੀ ਦੇਸ ਕੋ ਦੇਖ ਰਹਿਓ ਮਤ, ਕੋ ਨ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਪ੍ਰਾਣ ਪਤੀ ਕੇ, ਸ੍ਰੀ ਭਗਵਾਨ ਕੀ ਪਾਏ ਕਿਰਪਾ ਹੂਤੇ, ਏਕ ਰੱਤੀ ਬਿਨ ਏਕ ਰੱਤੀ ਕੇ, ਮਾਤੇ ਮਤੰਗ ਜਰੇ ਜਰ ਸੰਗ, ਅਨੂਪ ਉਤੰਗ ਸੁਰੰਗ ਸਵਾਰੇ, ਕੋਟ ਤੁਰੰਗ ਕੁਰੰਗ ਸੇ ਕੂਦਤ, ਪੌਣ ਕੇ ਗੌਣ ਪੁਜਾਤ ਨਿਵਾਰੇ, ਭਾਰੀ ਪੁਜਾਨ ਕੇ ਭੂਪ ਭਲੀ ਬਿਧ, ਨਿਆਵਤ ਸੀਸ ਨ ਜਾਤ ਵਿਚਾਰੇ, ਏਤੇ ਭਏ ਤੋ ਕਹਾ ਭਏ ਭੂਪਤ, ਅੰਤ ਕੋ ਨਾ ਗੇਹੀ ਪਾਏ ਪਧਾਰੇ। ਜੀਤ ਫੇਰਾ ਸਭ ਦੇਸ ਦਿਸਾਨ ਕੋ, ਬਾਜਤ ਢੋਲ ਮਿਰਦੰਗ ਨਗਾਰੇ, ਗੁੰਜਤ ਗੂਰ ਗਜਾਨ ਕੇ ਸੁੰਦਰ, ਹਿੰਸਤ ਹੀ ਹੈ ਰਾਜ ਹਜ਼ਾਰੇ, ਭੂਤ ਭਵਿੱਖ ਭਵਾਨ ਕੇ ਭੂਪਤ, ਕੌਣ ਗਣੈ ਨਹੀਂ ਜਾਤ ਵਿਚਾਰੇ, ਸ੍ਰੀਪਤ ਸ੍ਰੀ ਭਗਵਾਨ ਭਜੇ ਬਿਨ, ਅੰਤ ਕੋ ਅੰਤ ਕੇ ਧਾਮ ਸਿਧਾਰੇ। ਤੀਰਥ ਨਾਨ ਦਇਆ ਦਮਦਾਨ, ਸੋ ਸੰਜਮ ਨੇਮ ਅਨੇਕ ਵਿਸੇਖੈ, ਵੇਦ ਪੁਰਾਨ ਕਤੇਬ ਕੁਰਾਨ, ਜਮੀਨ ਜਮਾਨ ਸਬਾਨ ਕੇ ਪੇਖੈ, ਪੌਨ ਆਹਾਰ ਜਤੀ ਜਤ ਧਾਰ, ਸਭ ਹੈ ਸੋ ਵਿਚਾਰ ਹਜ਼ਾਰ ਕੁ ਦੇਖੈ, ਸ੍ਰੀ ਭਗਵਾਨ ਭਜੇ ਬਿਨ ਭੂਪਤ, ਏਕ ਰਤੀ ਬਿਨ ਏਕ ਨ ਲੇਖੈ। ਸੁਧ ਸਿਪਾਹ ਦੁਰੰਤ ਦੁਬਾਹ, ਸੁਸਾਦ ਸਨਾਹ ਦੁਰਜਾਨ ਦਲੇਂਗੇ, ਭਾਰੀ ਗੁਮਾਨ ਭਰੇ ਮਨ ਮੈਂ, ਕਰ ਪਰਬਤ ਪੰਖ ਹਲੇ ਨਾ ਹਲੇਂਗੇ, ਤੋਰ ਅਰੀਨ ਮਰੋ ਰਮ ਵਾਸਨ, ਮਾਤੇ ਮਤੰਗਨ ਮਨ ਮਲੇਂਗੇ, ਸ੍ਰੀਪਤ ਸ੍ਰੀ ਭਗਵਾਨ ਕਿਰਪਾ ਬਿਨ, ਤਿਆਗ ਜਹਾਨ ਨਿਦਾਨ ਚਲੇਂਗੇ, ਵੀਰ ਅਪਾਰ ਬੜੇ ਬਰਿਆਰ, ਅਪਚਾਰ ਹੈ ਸਾਰ ਕੀ ਧਾਰ ਪਛਈਆ, ਧੋਰਤ ਦੇਸ ਮਲਿੰਦਮ ਵਾਸਨ, ਮਾਤੇ ਗਜਾਨ ਕੇ ਮਾਨ ਮਲਈਆ, ਗਾੜੇ ਗੜਹਨ ਕੇ ਤੋੜਨ ਹਾਰ, ਸੋ ਬਾਤਨ ਹੀ ਚਕਚਾਰ ਲਵਈਆ, ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਸਭ ਕੋ ਸਿਰ ਨਾਇਕ, ਜਾਚਕ ਅਨੇਕ ਸੋ ਏਕ ਦਿਵਈਆ, ਦਾਨਵ ਦੇਵ ਫਨਿੰਦ ਨਿਸਾਚਰ, ਭੂਤ ਭਵਿੱਖ ਭਵਾਨ ਜਪੇਂਗੇ, ਜੀਵ ਜਿੱਤੇ ਜਲ ਮੈਂ ਥਲ ਮੈਂ, ਪਲ ਹੀ ਪਲ ਮੈਂ ਸਭ ਥਾਪ ਥਪੇਂਗੇ, ਹੁਨ ਪ੍ਰਤਾਪਨ ਬਾੜ ਜਤ ਤੁਨ ਪਾਪਨ ਕੇ ਬਹੁ ਪੁੰਜ ਖਪੇਂਗੇ, ਸਾਧ ਸਮੂਹ ਪ੍ਰਸੰਨ ਫਿਰੈ ਜਗ, ਸਤਰ ਸਭ ਹੈ ਅਵਲੋਕ ਚਪੇਂਗੇ, ਮਾਨਵ ਇੰਦਰ ਗਜਿੰਦਰ ਨਰਾਧਪ, ਜੋਨ ਤ੍ਰਿਲੋਕ ਕੋ ਰਾਜ ਕਰੇਂਗੇ, ਕੋਟ ਇਸ਼ਨਾਨ ਗਜਾਤ ਕਿਦਾਨ, ਅਨੇਕ ਸਵਯੰਬਰ ਸਾਜ ਭਰੇਂਗੇ, ਬ੍ਰਹਮ ਮਹੇਸ਼ਰ ਬਿਸਨ ਸਚੀਪਤ, ਅੰਤ ਫਸੇ ਜਮ ਫਾਸ ਭਰੇਂਗੇ, ਜੇ ਨਰ ਸ੍ਰੀਪਤ ਕੇ ਪ੍ਰਸ ਹੈ ਪਗ, ਤੇ ਨਰ ਫੇਰ ਨਾ ਦੇਹ ਤਰੇਂਗੇ, ਕਹਾਂ ਭਇਓ ਜੋ ਦੋ ਲੋਚਨ ਮੂੰਦ ਕੈ, ਬੈਠ ਰਹਿਓ ਬਕ ਧਿਆਨ ਲਗਾਇਓ, ਨਾਥ ਫਿਰਿਓ ਲੀਏ ਸਾਤ ਸਮੁੰਦਰਨ, ਲੋਕ ਗਇਓ ਪਰਲੋਕ ਗਵਾਇਓ, ਬਾਸ ਕੀਓ ਬਿਖਿਆਨ ਸੋ ਬੈਠ ਕੈ, ਐਸੇ ਹੀ ਐਸੇ ਸੋ ਬੈਸ ਬਿਤਾਇਓ, ਸਾਚ ਕਹੂੰ ਸੁਨ ਲੇਹੋ ਸਭ ਹੈ, ਜਿਨ ਪ੍ਰੇਮ ਕੀਓ ਤਿਨ ਹੀ ਪ੍ਰਭ ਪਾਇਓ, ਕਾਹੂ ਲੈ ਪਾਹਨ ਪੂਜ ਧਰਿਓ ਸਿਰ, ਕਾਹੂ ਲੈ ਲਿੰਗ ਗਰੇ ਲਟਕਾਇਓ, ਕਾਹੂ ਲਖਿਓ ਹਰ ਅਵਾਚੀ ਦਿਸਾ ਮਹਿ, ਕਾਹੂ ਪਛਾਹ ਕੋ ਸੀਸ ਨਿਵਾਯੋ, ਕੋ ਬੁਤਾਨ ਕੋ ਪੂਜਤ ਹੈ ਪਸ, ਕੋ ਮ੍ਰਿਤਾਨ ਕੋ ਪੂਜਨ ਧਾਇਓ, ਕੂਰ ਕਿਰਿਆ ਉਰਜਿਓ ਸਭ ਹੀ ਜਗ, ਸ੍ਰੀ ਭਗਵਾਨ ਕੋ ਭੇਦ ਨਾ ਪਾਇਓ, ਕੂਰ ਕਿਰਿਆ ਉਰਜਿਓ ਸਭ ਹੀ ਜਗ, ਸ੍ਰੀ ਭਗਵਾਨ ਕੋ ਭੇਦ ਨਾ ਪਾਇਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇੱਕ ਓਅੰਕਾਰ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦਸਵੀਂ, ਕਵਿਓ ਬਾਚ ਬੇਨਤੀ ਚੌਪਈ, ਹਮਰੀ ਕਰੋ ਹਾਥ ਦੈ ਰੱਛਾ, ਪੂਰਨ ਹੋਏ ਚਿਤ ਕੀ ਇੱਛਾ, ਤਵ ਚਰਨਨ ਮਨ ਰਹਿ ਹਮਾਰਾ, ਆਪਣਾ ਜਾਨ ਕਰੋ ਪ੍ਰਤਪਾਰਾ, ਹਮਰੇ ਦੁਸ਼ਟ ਸਭੈ ਤੁਮ ਕਾਵਹੋ, ਆਪ ਹਾਥ ਦੈ ਮੋਹੇ ਬਚਾਵਹੋ, ਸੁਖੀ ਬਸਹਿ ਮੋਰੋ ਪਰਵਾਰਾ, ਸੇਵਕ ਸਿੱਖ ਸਭੈ ਕਰਤਾਰਾ, ਮੋਰ ਅੱਛਾ ਨਿਜ ਕਰਦੈ ਕਰਿਐ, ਸਭ ਬੈਰਨ ਕੋ ਆਜ ਸੰਘਰਿਐ,
पूरन होए हमारी आसा, तोर भजन की रह प्यासा। तुम है छाड़ कोई अवर न त्याऊं, जो वर चाहूं सो तुम ते पाऊं। सेवक सिख हमारे तारी है, चुन चुन सत्र हमारे मारी है। आप हाथ द मुझे उबरिया, मरण काल का त्रास निवरिया। पूजो सदा हमारे पच्छा, श्री अस्तु जुजु करे हो रच्छा। राख लिहो मोहे राखन हारे, साहिब संत सहाय प्यारे। दीन बंध दुष्टन के हंता, तुम हो पुरी चतुर दसकंता। काल पाए ब्रह्मा बपतरा, काल पाए शिव जू अवतरा। काल पाए कर विष्णु प्रकाशा, सकल काल का किया तुमासा। जवन काल जोगी शिव कियो, वेद राज ब्रह्मा जूथियो। जवन काल सब लोक सवारा, नमस्कार है ताहे हमारा। जवन काल सब जगत बनायो, देव दैत जचन उपजायो। आद अंत एक अवतारा, सोई गुरु समझियो हमारा। नमस्कार तिस ही को हमारी, सकल प्रजा जिन आप सवारी। सेवकन को सब गुण सुख दियो, सत्रन को पल मोह बध कियो। कट कट के अंतर की जानत, भले बुरे की पीर पछानत। चीटी ते कुंचर अस्थूला, सब पर कृपा दृष्ट कर फूला। संतन दुख पाए ते दुखी, सुख पाए साधन के सुखी। एक एक की पीर पछानै, कट कट के पट पट की जानै। जब उदकर्क करा कर तारा, प्रजा तर्त तब देहे अपारा। जब आकर्क करत हो कब हूँ, तुम मैं मिलत देह तर सब हूँ। जेते बदन सृष्ट सब तारै, आप आपनी बूझ उचारै। तुम सब ही ते रहत निरालम, जानत वेद भेद अर आलम। निरंकार निर्विकार निर्लंभ, आद अनिल अनाद असंभ। ताका मूढ़ उचारत पेदा, जाको पेव न पावत बेदा। ताको कर पाहन अनुमानत, महामूढ़ कछ भेद न जानत। महादेव को कहत सदा शिव, निरंकार का चीनत नह पिव। आप आपनी बुध है जेती, बरनत भिन्न भिन्न तुह तेती। तुमरा लखा न जाए पसारा, केह बिद सजा प्रथम संसारा। एक रूप अनूप स्वरूपा, रंग पयो राव कही पूपा। अंडज जेरज सेतज कीनी, उत्पुज खान बहर रच दीनी। कहूं फूल राजा हव बैठा, कहूं सिमट पयो शंकर इकैठा। सिगड़ी सृष्ट दिखाए अचंभव, आज जुगा स्वरूप स्वयं भव। अब रक्षा मेरी तुम करो, सिख उबार असिख संघरो। दुष्ट जिते उठवत उत्पाता, सकल मलेच्छ करो रण काता। जे अस्तुल तव सरनी परे, तिनके दुष्ट दुखित हवे मरे। पुरख जवन पग परे तिहारे, तिनके तुम संकट सब टारे। जो कल को एक बार त्या है, ताके काल निकट न है। रक्षा हुए ताहि सब काला, दुष्ट अरिष्ट टरे तत्काला। कृपा दृष्ट तन जाहि निहर हो, ताके ताप तनक मह हर हो। रिद्ध सिद्ध कर्मो सब होई, दुष्ट छा छुए सके न कोई। एक बार जिन तुम्हें संभारा, काल पास्ते ताहे उबारा। जिन नर नाम तिहारो कहा, दारिद दुष्ट दोख ते रहा। खड़ग के तुम्हें शरण तिहारी, आप हाथ दैले हो उबारी। सर्व ठोर मोह हो सहाई, दुष्ट दोख ते ले हो बचाई। खड़ग के तुम्हें शरण तिहारी, आप हाथ दे लेहो उबारी। सर्व ठोर मोह हो सहाई, दुष्ट दोख ते लेहो बचाई। कृपा करी हम पर जग माता, ग्रंथ करा पूरन सुभराता। किल बिख सकल देहे को हरता, दुष्ट दोखे अनकोच है करता। श्री अस्तुज जब पये दयाला, पूरन करा ग्रंथ तत्काला। मन बांछत फल पावै सोई, दुख न तिसै व्यापत कोई। अड़िल सुनै गुंग जो याहे सुरसना पावई। सुनै मूढ़ चित लाए चतुरता आवई। दुख दर्द पौर निकट न तिन्नर के रह, हो जो या की एक बार चौपई को कह। चौपई संबत सत्र है सहस पण जय, अर्ध सहस पुन तीन कह जय। भाद्रव सुदी अष्टमी रव बारा, तीर सतुद्रव ग्रंथ सुधारा। सवैया
पाए गहे जब ते तुमरे तब ते को आंख तरे नहीं आन्यो। राम रहीम पुराण कुरान अनेक कहें मत एक न मान्यो। सिमरत शास्त्र वेद सब बहु भेद कहें हम एक न जान्यो। श्री अस्पान कृपा तुमरी कर मैं न कहियो सब तोहे बखान्यो। दोहरा सगल द्वार को छाड़ के गयो तुहारो द्वार। बाहें गहे की लाज अस गोविंद दास तुहार। सगल द्वार को छाड़ के गयो तुहारो द्वार। बाहें गहे की लाज अस गोविंद दास तुहार। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह।

नानक तेमुख उजले केती छुट्टी नाल जिन्नी नाम ते आया गए मशक्कत काल नानक तेमुख उजले केती छुट्टी नाल। वाहिगुरु जी का खालसा।

जी बोलो जी, प्रपास जन की अरदास, तू सच्चा साईं, तू रखवाला सदा सदा हो, तू तो त्याई जी जंत सब तेरिया, तू रह समाई, जो दास तेरे की निंदा करे तिस मार बचाई, चिंता छाड़ अचिंत रहो नानक लगवाई। अरदास एक ओवंकार श्री वाहेगुरु जी की फतेह। श्री भगवत जी सहाय वार श्री भगवत जी की पातशाही दसवीं प्रथम भगवती सिमर के गुरु नानक ले त्याय किरंगत गुरु ते अमरदास रामदास हो सहाय। अर्जन हर गोविंद नो सिमरो श्री हर राय श्री हर कृष्ण त्याई है जिस जिठे सब दुख जाए। तेग बहादुर सिमरे कर नौ निदावे ताए सब थाई होए सहाय। दसवीं पातशाह शैव श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज सब थाई होए सहाय। दसा पातशाहियों की जोत गुरु ग्रंथ साहब जी के पाठ दर्शन दिदार जी का ध्यान करके बोलो जी। पंजा प्यारिया चौहा साहबजादिया चालिया मुक्तियां हटियां जपिया तपिया जिना नाम जपया वंड के छकया देग चलाई देग वहाई देख के अंडित किया तिना प्यारिया सच्यारे की कमाई का ध्यान करके बोलो जी। जिन्हां सिंघां सिंघणियां ने धर्म हेत सीस दिते बंद बंद कटाए खोपरियां लुहाइयां चरखड़िया ते चढ़े आरिया नाल तन चरवाए गुरुद्वारे की सेवा लई कुर्बानियां कीतियां सिखी केसा स्वासा संग निभाई धर्म नहीं हारिया इन्हां दी कमाई का ध्यान करके बोलो जी। पंजां तख्तां सरबत गुरुद्वारे की कमाई का ध्यान करके बोलो जी। प्रथमे सरबत खालसा जी की अरदास है सरबत खालसा जी को वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु चितावे चितावन का सदका सर्व सुख होए जहां जहां खालसा जी साहेब तहां तहां रचिया रियायत देग देग फतेह बिरद की पैज पंथ की जीत श्री साहब जी साहे खालसा जी के बोल वाले। बोलना जी। सिखानु सिखी दान केस दान रहत दान विवेक दान विसाव दान भरोसा दान दाना सिर दान नाम दान श्री अमृतसर जी के दर्शन इशनान चौंकियां झंडे पुंगे जुगो जुग अटल धर्म का जयकार खालसा जी के बोल वाले। बोलना जी। सिखां दा मन नीवा मत उची मत पतदा रखा आप अकाल पुरख वाहिगुरु जी हे अकाल पुरख सतगुरु अपने पंथ दे सदा सहाई दाता जो श्री ननकाणा साहिब होर गुरुद्वारिया गुरधामा जिन्हां तो पंथ नूं विछोड़िया गया तिन्हां दी सेवा संभाल खुले दर्शन दीदार प्यारे पंथ खालसा जी नूं बख्शिश करो निमाणिया दे मान निताणिया दे तान नियोटिया दी ओट गुरु गरीब निवाज निगत्या दी गत निलज्या दी लज नितरिया दी तिर धन गुरु नानक सच्चे पातशाह जी धन गुरु गोबिंद सिंह जी धन धन धन गुरु ग्रंथ साहिब जी दसां पातशाहियां दी जोत शब्द गुरु दाता जी आप जी दे मुबारक दर ते अरदास बेनती है सच्चे पातशाह आप जी दे पाणी अंदर चार पहर सुख रहण बती पड़ी है महाराज जी आप जिया का तरस होया मेरा मत हुई सच्चे पातशाह जी अमृत वेला आप जिया ने बख्शिश किया अमृत वेले दे दर्शन दीदार आप जी दे हुए ने महाराज जी सचखंड तो चाले पा के आप जिया ने तख्तां ते प्रकाशवान होके खुले दर्शन दीदार बख्शिश किए हैं महाराज जी पवित्र हुक्मनामा बख्शिया सतगुरु जी उपरंत सुखमनी सुख अमृत प्रभ नाम भगत जना कै मन विश्राम सुखमनी साहब जी का पाठ पंजा बाणिया का नितनेम होया गुरु गरीब निवास जी आप जी के टहलिया सेवकों पासों सेवा करदियां बाणी पढ़दियां आप जी की हजूरी विच बैठदियां विचरदियां बेअंत भुला हो गई तुसी बख्शन योग हो महाराज जी सदा साज के रखियो निवाज के रखियो महाराज जी आप जी दे दर घर दे प्रीतवान भाई जैरी अते बीबी हरलीन को समूह परिवार दी सेहत तंदुरुस्ती चढ़दी कला लई परिवार वालों अरदास बेनती है सच्चे पातशाह अरदास बेनती करदिया गुरु घर दी बन रही बिल्डिंग वास्ते बेअंत भेटा माया परिवार वालों आप जी दे दर ते भेटा कीती गई है प्रवान करनी महाराज जी भाई जैरी अते बीबी हरलीन कौर समूह परिवार को चढ़ती कला परिवार की इच्छा है तंदुरुस्ती सेहत याबी बख्शिश करनी गुरु गरीब निवास बेअंत संगत आप जी के सोहने दरबार में गुरमुख रूह हाजरिया पलियां ने महाराज जी आप जी सब दे नाम जाने जाण हो बिन बोलिया
ਸਭ ਕਿਛ ਜਾਣਦਾ, ਕਿਸ ਅੱਗੇ ਕਿਛੇ ਅਰਦਾਸ, ਨਾਨਕ ਘੱਟ ਘੱਟ ਇੱਕੋ ਵਰਤਦਾ, ਸ਼ਬਦ ਕਰੇ ਪ੍ਰਗਾਸ਼, ਗੁਰਮੁਖ ਰੂਹਾਂ ਨੂੰ ਸਦਾ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਾਲਾ ਜੀਵਨ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੀ ਦੇ ਸਜ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ, ਆਪ ਜੀ ਦਰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੋ, ਭੋਗ ਲਗਾਓ, ਭੋਗ ਲੱਗਿਆ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਜੋ ਵੀ ਛਕੇ, ਆਪ ਜੀਆਂ ਦਾ ਨਾਮ ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜਪੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਮਿਹਰ ਕਰੋ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਦਰ ਕਰਦੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਰਿਵਾਰ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਜ਼ੀਰ ਸਰਦਾਰ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਾਜਵਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੰਦਰੁਸਤੀਆਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਛਾ ਹੈ, ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਇੱਛਾ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਦਰ ਦੇ ਵਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਫਿਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਦਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨਾਲ ਨਿਵਾਜੋ, ਗੁਰੂ ਗਰੀਬ ਵਿੱਚ ਮਿਹਰਾਂ ਕਰੋ, ਮਿਹਰਾਂ ਕਰੋ ਦਾਸਰਿਆਂ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਧਰਮ ਪਤਨੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਬੱਚੀ ਡਿੰਪਲ, ਬੇਟੀ ਆਦਗੁਣ ਕੌਰ, ਹੋਰ ਬੇਟਾ ਅਕਾਲਜੋਤ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਦਾਸ ਨੂੰ ਸਦਾ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਆਉਣ ਵਾਲਾ, ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਭਰਿਆ, ਬਰਕਤਾਂ ਭਰਿਆ, ਰਹਿਮਤਾਂ ਭਰਿਆ ਲੈ ਕੇ ਆਓ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਬੱਚਾ ਸੰਨੀ ਅਤੇ ਸਮੂਹ ਜਥੇ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਭਰਿਆ ਮਹਾਰਾਜ, ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਦਾਸਰਿਆਂ ਦੇ ਕਾਰਜ

करे सो हमरी रचया करे सो कलगी तर जगदीश बोले सो निहा। वाहिगुरु जी का खालसा।

हार परे हो तो द्वार, लेखा छोड़ अलेखे छूटे हम।

ਵਿਖ ਵਿਖ ਮਾਇਆ ਮੋਹ ਪਰਮ ਭੂਲੇ ਸੁਤ ਦਾਰਾ ਸਿਉ ਪ੍ਰੀਤ ਲਗਾਈ

0: सच्चे तो दाखा लख करोड़, सच्चा सप्तान सच्चा सब जोर, सच्ची तेरी सिफत सच्ची सलाह, सच्ची तेरी कुदरत सच्चे पातशाह, नानक सच ध्यान सच, जो मर जमे सो कच निकच, महला पहला।
1: वड्डी वड्याई जा वड्डा नाओ, वड्डी वड्याई जा सच ने आओ।

बोलो चरखा चक्की चक थल वारोले बहुत अनंत लाटू मां दानियां अनगा पंखी पौंदियां लै नसा सूए चाड़ पवाई जंत नानक पौंदियां गणत ना अंत।

0: प्यार मूर्ख पंडित हिकमत हुज्जत संजय करे प्यार धर्मी धर्म करेगा वावे मंगे मुख द्वार जति सदा वह जुगत न जाने छठ पह कर बार सबको पूरा पे हो वह कट न कोई आख पथ परवाना पिछे पाईए ता नानक तोलिया जाप महला पहला
1: सोज ज्ञान का सचा वेखे सोए सब निशाला मारिया करता करे सोए अगे जात न जोर है अगे जीवन में जिनकी लेखे पत्व बे चंगे से कि पूरी तुर कर्म जना कुछ पाया।

जुग जुग फेर वटाइया ज्ञानी बुझ ताहे सतजुग रसन तो का धर्म गर्थ वाहो त्रित रथ जत का जोर गर्थ वाहो द्वापर तप का सत गर्थ वाहो कलजुग रथगन का कूड़ गर्थ वाहो।

मंजोर चली चंद्रा उलकान कृष्ण जादम पाया पार जात गोपी ल आया बिंद्रावन में रंग किया कल मैं वेद सरपण हुआ नाम खुदया लो पया नील मस्त्र ले कपड़े पहरे तुर्क पठाने वल की आचारे वेद हो चार पढ़े गुण तीन चार विचार पाओ भगत करनी सदा अवनान मुखन तर पाए पौड़ी सतगुर विटो।

0: एको सचा सोए
1: जित मुख सदा सलाहिए पागा रती चार नानक तेन कुछ ले सचे दरबार पौड़ी सबको अकेला।

एक ओंकार सत गुर प्रसाद देव पुरी में गयो आप परमेश्वर पायो हर सिंघासन दियो श्री गुरु तह बैठायो रहस कियो सुरदेव तोहे जस जय जय जंप है असुर गए ते भाग

सिंह आसन पृथ्वी गुर अर्जन को दे आयो हर की वडियाई हो आख ना सका हो मूर्ख मुग्ध नीचान जन नान को हार बख्श लै मेरे स्वामी शरणागत प्यार

तिल तिल पल पल औध फुन काटै बूझ न सकै गवार सो किछ करै जे साथ न चलै।

बिन गुर भेटे मुक्त न काहू, मिलत नहीं जगदीसै, खोजत खोजत एह बिचार्यो, सर्ब सुखा हर नामा, कहो नानक तिस भय।

झूले से छत निरंजनी मल तक सब बैठा गुर हटिया है, कर है जी गुर फुरमाया सिर जोग अलूनी चटिया है। लंगर चले गुर शब्द हार तोट न आवई खटिया है, खर्चे दित खसम दे आप खह दी खैर दबटिया है। होवै सिफत खसम दी नूर अरसों कुरसों झटिया है, तुद डिठे सचे पातशाह मल जन्म जन्म दी कटिया है। सच जी गुर फुरमाया क्यों एदू बोलो हटिया है, पुत्री कौल न पालियो कर पिहरो कन मुरटिया है। दिल खोटाया की फिरन बन पार उचाए न छटिया है, जिन आखी सोई करे जिन कीती तिन थटिया है। कौन हारे किन उबटिया है, जिन कीती सो मनना को साल जिवाहे साली। धर्म राय है देवता लै गल्ला करे दलाली, सतगुर आखै सच्चा करे सा बात होवै दरहली। गोरे अंगद दी दोही फिरी सच करतै बंद बहाली, नानक काया पलट कर मल तख्त बैठा सह डाली। दर से वे उमत खड़ी मस्कलाय होए जंगाली, दर दर वेस खसमदाय नाए सच्चै बाणी लाली। बलखंड बलवंड खी भी नेक जन जिस बहुती शाओ पतराली, लंगर दौलत वंडिया रस अमृत खीर खियाली। गुरसिखा के मुख उजले मन मुख थिए पराली, पै कबूल खसम नाल जा काल मार दी काली। माता की भी सौ सोए जिन गोए उठाली, होर्यों गंग बहाई है दुनिया दुनियाई आखे की क्यों। नानक ईसर जगन्नाथ उचह दी वैन वीर क्यों। माधाना पर्वत कर नेतर पासक शब्द रिड़ क्यों। चौदह रतन निकालियन कर आवा गौन चिल क्यों। कुदरत है वे खालियन जिन एवड पिंड ठिणकियोन। लहने तरियोन छत्र सिर असमान की आड़ा चिकियोन। जोत समाणी जोत माहे आप आपे सेती विकियोन। सिखा पुथरा कोख कै सब उमत वेखो जी क्यों। जा सुदो सुता लहना टिकियोन। फेर वसाया फेर आन सतगुर खाडूर, जात संजुन नाल तो दहोर मुच गरूर। लब बिना हे मानसा जो पानी बूर, वरिया दरगह गुरु की कुदरती नूर। जित सुहाथ न लबई तू ओठ रूर, नौ निद नाम निदान है तुद विच भरपूर। निंदा तेरी जो करे सो वञै चूर, नेड़े दिसै मात लोक।

निजर तारचू है अत निर्मल यह रसमनवारा तोरे कह कबीर सगले मद छूछे यह महारस सचोरे। गुड़ कर ज्ञान ध्यान कर महुआ पौ पाठी मन तारा सुख मन नारी सही समानी पीवै पीवन हारा औधु मेरा मन मतवारा उन मन चढ़ा मदन रस चाख्या त्रिपवन पया उजियारा। दोए पर जोर बरसाई पाठी पी पीओ महारस भारी काम करो दोए की अजलता छूट गई संसारी। प्रगट प्रकाश ज्ञान गुर गमत सतगुर से सुध पाई दास कबीर दास मद माता उचक कबहु न जाई। तू मेरो मेर पर स्वामी उठ गई मैं तेरी ना तुम डोलो ना हम गिरते रख ली नी हर मेरी। अब तब जब कब तुही हम तो प्रसाद सुखी सद ही रहा। तेरे भरोसे मगहर बस्यो मेरे तन की तप्त बुझाई पहले दर्शन मगहर पायो फुन काशी बसे आई। जैसा मगहर तैसी काशी हमें कह कर जानी हम निर्धन जो ये धन पाया मरते फूट गुमानी। कह गुमान चुभते सूला को काटन को नाही अजय सुचोभ कहो बिल बिलाते नरके घोर पचाही। कवन नरके असुर्ग बिचारा संतन दो राधे हम काहू की कान न कटते अपने गुर प्रसादे। आब तो जाए चढ़े सिंहासन मिले है सारंग पानी राम कबीरा एक पय है कोई न सके पिछानी। संता मानो दूता डानो है कुटवारी मेरी दिवस रहन तेरे पाओ फलो सौ केस कवर कर फेरी। हम कूकर तेरे दरबार पौका आगे बदन पुसार रहाओ। पूर्व जन्म न हम तुमरे सेवक अब तो मिटिया न जाई तेरा द्वार है धुन सहज की माथा मेरे दगाई। दागे हुए सुरन में जो जय बिन दागे भग जाई साधु हुए सु भगत पछाना हर लय खजाना पाई। कोठरे मैं कोठरी परम कोठी विचार गुरदीनी बस्त कबीर को ले वो बस्त समार। कबीर दी संसार को लीनी जिस मस्तक भाग अमृत रस जन पाया तिरता का सुहाग। जे मुख भेद गायत्री निकसै सो क्यों ब्रह्मन बिसन करै सो क्यों ब्रह्मन बिसर करै जा कह पाए जगत सब लागे सो क्यों पंडित हार न कहै। काहे मेरे बामन हार न कहै राम न बोले पांडे दोजक भरै रहाउ। आपन ऊंच नीच कर भोजन हठे कर्म कर उधर पर है चौदस अमावस रचमच मांगे कर दीप कले कूप पर है। तू ब्राह्मण मैं काशिक जुल्हा मोय तोहे बराबरी कैसे कह बनहे हमरे राम नाम कहे उबरे वेद परोसे पांडे डूब मरहे। तरवर एक अनंत डार साखा ओह पतर रस परिया एह अमृत की बाड़ी है रे तिन हर पूरा करिया। जानी जानी रे राजा राम की कहानी अंतर ज्योत राम परगासा गुरमुख बिरला जानी रहा। पावर एक पोह परस बीदा बारह ले और तरिया सोरह मध्य पवन चुकार चुकोरिया आकाशे फरफरिया। सही सोनिक बिरवा उपजया धरती जल हर सुखिया कह कबीर होता का सेवक जिन्हे बिरवा देखिया। मुंद्रा मोन दया कर झोली पत्र का करो विचार रे खिंता ए तनसियो अपना नाम करो आधार रे। ऐसा जो कमावो जोगी जब तब संयम गुरमुख भोगी रहा। बुद्ध विपुल चढ़ावो अपनी सिंगी सुरत मिलाई कर बैराग फिरो तन नगरी मन की किंगरी बजाई। पंच तातला हृदय रखो रह निरालम ताड़ी कह कबीर सुनोरे संतो धर्म दया कर बाड़ी। कवन काज सिरजे जग पीतर जमन जन्म कवन फर पाया भावने तरन तारन चिंता मन एक निमख नय मन लाया। गोविंद हम ऐसे अपराधी जिन प्रभु ओ पिंड थदिया तिसकी पाओ भगत नहीं साधी रहा। पार धन पार धन पारती निंदा पर अपवाद न छूटै आवागमन होत है पुन पुन ए प्रसंग न टूटै।
जे घर कथा हो थार संतन एक निमख न की नो मैं फेरा लंपट चोर दूत मतवारे तिन संग सदा बसेरा काम क्रोध माया मद मत्सर ए संपै मो माही दया धर्म अर गुर की सेवा ए सुपनंतर नाही दीन दयाल कृपाल दमोदर भगत पछल पयहारी कैद कबीर पीर जन रखो हर सेवा।

बजावै तूर, अनहद बजै सदा भरपूर। ऐसा सिमरन कर मन माहे, बिन सिमरन मुक्त कत नाहे रहा। जय सिमरन नाही ननकार, मुक्त करै उतरै बो पार। नमस्कार कर हृदय माहे, फिर तेरा यामन नाहे। जय सिमरन करै तू केल, दीपक बांध धरियो बिन तेल। सो दीपक अमरक संसार, काम क्रोध बिक काढ़ी ले मार। जे सिमरन तेरी गत होए, सो सिमरन राकंठ परोए। सो सिमरन कर नहीं राख उतार, गुर प्रसादी उतरै पार। जे सिमरन

राम कली कर दूजा बाणी कबीर जी की एक ओंकार सतगुर प्रसाद। बंदच बंधन पाया मुक्त गुरु न बुझाया, जख नख सिख ए मन चीना, तब अंतर मजन कीना। पवन पत उन्मन रहन खरा, न मृत न जन्म जरा, रहा उल्टी ले सख्त सहारंग, पैसीले गगन मजारंग। बेदियले चक्र पोयंगा, पेटियले राय नसंगा, चूकियले मोह मयासा, सस्कीनो सूर गिरासा। जब कुंभक भरपुर लीना, तय बाजे अनहद बीणा, बक्त बक शब्द सुनाया, सुनतय सुन मन बसाया। कार करता उतरस पारंग, कह कबीरा सारंग। चंद सूर्य द ज्योत स्वरूप, ज्योति अंदर बहुत अनूप, कर ज्ञानी ब्रह्म विचार, ज्योति अंतर सरिया पसार। रहाओ हीरा देख हीरे करो आदेश, कह कबीर निरंजन आलेख। दुनिया होशियार बेदार जागत, मुसियत होरे पाई, निगम होशियार पहरुआ, देखत जम ले जाई। रहाओ नीम भयो आंब, आंब भयो नीबा, केला पाका चार, नालियेर फल सेबर पाका, मूर्ख मुग्ध नालियेर फल सेबर पाका, मूर्ख मुग्ध गवार। हार पयो खांड रेत में बिखरियो, हस्ती चुनियो न जाई, कह कमीर कुल जात पांत साज, चीटी हुए चुन खाई। बाणी नाम देव जियो की, राम कली कर पहला एक ओंकार सतगुर प्रसाद। अनिले कागद काटीले, गुडी आकाश मध्य परमियले, पंच जना स्यो बात बतुआ, चीत सुडोरी राखियले। मन राम नामा बेदियले, जैसे कनक राचत मांडियले। रहा अनिले कुंभ पराईले, उदक राजकुआर पुरंदरिये, हस बिनोद विचार करती है, चीत सुगागर राखियले। मंदर एक द्वार दस जाके, गौचरावन छाटियले, पांच कोस पर गौचरावत, चीत सुबशरा राखियले। कायत नाम देव सुनो त्रिलोचन, बालक पालन पौडियले, अंतर बाहर काज विरुदी, चीत सुबारक राखियले। वेद पुराण शास्त्र अनंता, गीत कवित नगावो गो, अखंड मंडल निरंकार में अनहद बेन बजावो गो। बैरागी रामै गावो गो, सबदा तीता नाद राता, कुल के कर जाओ गो। रहाओ पीड़ा पिंगुला और सुख मना, पौने बंद रहाओ गो, चंद सूरज दो सम कर राखो, ब्रह्म ज्योत मिल जाओ गो। तीर्थ देखना जल में पैसो, जी जंत न सतावो गो, अठसठ तीर्थ गुरु दिखाए, काटे पीतर नाओ गो। पंच सहाई जन की शोभा, पढ़ो पढ़ो न कहावो गो, नामा कहे चेत हर स्यो राता, सुन समाध समाओ गो। माय न होती बाप न होता, कर्म न होती काया, हम नहीं होते तुम नहीं होते, कमन कहां ते आया। राम कोई न किसे केरा, जैसे तरवर पंख बसेरा। रहा चंद न होता सूर न होता, पावी पानी पवन मिलाया, सास न होता वेद न होता, कर्म कहां ते आया। खेचर पूचर तुलसी माला, गुर प्रसादी पाया, नामा प्रण में परम तत् है, सतगुर हुए लखाया। राम कली कर दूजा बानार, सी तप करे उल्ट तीर्थ मरै, अगन देह काया कल्प की जय, असुमेध जा की जय, सोना गर्भदान दी जय, राम नाम सर तउ न पूजै। छोड़ छोड़ रे पाखंडी, मन कपट न की जय, हर का नाम नित नित हैली जय। रहाओ गंगा जो गोदावर जाइये, कुंभ जो केदार नाइये, गोमती सहस गऊ दान की जय। कूट जो तीर्थ करे तन, जो हिवालय गारे, राम नाम सर तउ न पूजै। आस दान गज दान, सहजा नारी भूम दान, ऐसो दान नित नित है की जय। आत्म जो निर्मायल की जय, आप बराबर कंचन दी जय, राम नाम सर तउ न पूजै। मन न की जय, रोस जमह न दी जय, दोष निर्मल निर्वाण पद चीन दी जय। जसरथ राय नंद राजा मेरा, राम चंद प्रणवय नामा, तत रस अमृत पी जय। जसरथ राय नंद राजा राम मेरा, राम चंद राजा मेरा, राम चंद प्रणवय नामा, तत रस अमृत पी जय। राम कली बाणी रविदास जी की एक ओंकार सतगुर प्रसाद। पढ़िए गुनिया नाम सब सुनिए, अनुभव भाव न दरसै, लोहा कंचन हिरन होए कैसे, जो पार सह न परसै। देव संसय गांठ न छूटे, काम क्रोध माया मद मत सरे, पंचो मिल लूटे। रहा
हम बड कब कुलीन हम पंडित हम जोगी सन्यासी ज्ञानी गुणी सूर हम दाते हो बुद्ध कब है ननासी कौरव दास सब है निसमझस फूल परे जैसे बोरे मोहे आधार नाम नारायण जीवन प्राण धन मोरे मोहे आधार नाम नारायण जीवन प्राण धन मोरे राम कली बाणी बेणी जियो की एक ओंकार सतगुर प्रसाद ईड़ा पिंगलाय और सुख मना तीन बसा इकठाई बेणी संगम तह पिराग मन मजन करे तिथाई संतो तहां निरंजन राम है गुरगम चीन बिरला कोए तहां निरंजन मैया होए रहाओ देवस्थान क्या निशानी तह बाजे शब्द अनाहद बाणी तह चांदना सूरज पौन न पानी जागी साखी जागी गुरमुख जानी उपजय ज्ञान दुर्मत चीजय अमृत रस गगन अंतर पीजय इस कला जो जाना पियो पीटै तास परम गुरुदेव दसम द्वार आगम अपारा परमपुर की घाटी ऊपर हाट पाट अरपा पर आला आले पीतर थाते जाग रह सुख भवन सोवै तीन त्लोक समाध पलोवै बीज मंत्र लय हृदय रह मनुआ उल्ट सुन मैं गह जागत रह ना लिया पाख पांचो इंद्री बस कर रख गुर की साखी राखे चीत मन तनर्प किसन प्री कृष्ण प्रीत कर पलव साखा बिचारे अपना जन्म न जुए हारे असुर नदी का बंदा मूल पछम फेर चढ़ावे सूर अजर जर सुन जर चरा जगन्नाथ से गोष्ठ करै चौमुख दीवा जो द्वार पलू अनाथ मूल बिचकार सर्व कला ले आपे रह मन मान ग्रत नाम गुह मस्तक पदम दुआ लय मणि माय निरंजन त्रिपवन तनि पंच शब्द निर्माण बाजे पुड़के चवर शंख कनगाजे दाल मल दे तो गुरम ज्ञान बेणी जाचा तेरा नाम राग नाटन नारायण महला चौथा एक ओंकार सतनाम कर्ता पुरख निर्भउ निर्वैर अकाल मूरत जूनी सहपं गुर प्रसाद मेरे मन जप अहनिस नाम हरे कोट कोट दुख बोकीने सब पर हर पास तरे रहाओ हर हर नाम जपया राधा है सेवक पाए खरे किनबे दो गए सब नीकर जो पानी मैल हरे खेन खेन नर नारायण गावे मुख बोले नर नर हरे पंच दोख साध नगर में एक खेन पल दूर करे वट पागी हर नाम ते आवे हर के भगत हरे तिनकी संगत दे प्रभ जाचो मैं मूड मुग्ध निस्तरे कृपा कृपा धार जग जीवन रख ले वो शरण परे नानक जन तुमरी सरनाई हर राखो लाज हरे नट महला चौथा राम जप जन राम नाम रले राम नाम जप्यो गुरबचनी हर तारी हर कृपले रहाओ हर हर अगमय गोचर स्वामी जन जप मिल सरल सरले हर के संत मिल राम रस पाया हम जन कह बल बलले पुरखोत्तम हर नाम जन गायो सब दालद दुख दलले विच देही दोख साध पंच तातु हर किए खिन परले हर के संत मन प्रीत लगाए जो देखे सस कमले उनमें कन कन कन हर गर जाए मन बिकसै मोर मुरले हमरे स्वामी लोच हम लाई हम जीव देख हर मिले जन नानक हर अमल हर लाए हर मिलो आनंद भले नट महला चौथा मेरे मन जाप हर हर नाम सके गुर प्रसादी हर नाम ते आयो हम सतगुर पर चरण पखे रहाओ उत्तम जगन्नाथ जगदीश राम पापी सरण रखे तुम बड़ पुरख दीन दुख भंजन हर दियो नाम मुखे हर गुण ऊंच नीच हम गाए गुर सतगुर संग सखे जो चंदन संग बसे निम बिरखा गुण चंदन के बसखे हमरे अवगन विख्या बिखा के बो बार बार निमखे अवगन यारे पाथर पारे हम तारे संग जनखे जिन को तुम हर राखो स्वामी सब तिन के पाप क्रिखे जन नानक दयाल प्रभ स्वामी तुम दुष्ट तारे हर नखे नट महला चौथा मेरे मन जाप हर हर राम रंगे हर हर कृपा करी जगदीसर हर त्यायो जन पग लगे रहाओ
जन्म जन्म के भूल चूक हम अब आए प्रभु शरण के, तुम शरणागत प्रतपालक स्वामी हम राखो बड पाप के। तुमरी संगत हर को कोना उधरियो, प्रभु किए पतत पवगे, गुण गाव छी पादुष्टार्यो प्रभु राखी पैज जनगे। जो तुमरे गुण गाव स्वामी हो बल बल बल तिनगे, पवन पवन पवित्र सब किए जय धूर परि जन पगे। तुमरे गुण प्रभ कह न सके हम तुम वड वड पुरख वडगे, जन नानक को दया प्रभ धारो हम सेवो तुम जन पगे। नट महला चौथा मेरे मन जप हर हर नाम मने, जगन्नाथ कृपा प्रभ धारी मत गुरमत नाम बने रहाओ। हर जन हर जस हर हर गायो उपदेश।

जानो हम कह न सके हर गुने जैसे तुम तैसे प्रथम ही गुण जानो प्रभु अपने माया फास बंद बहु बंदे हर जपियो खुल खुलने जो जल कुंच तदुए बांधे हो हर चेते हो मुख मुख ने स्वामी पार ब्रह्म परमेश्वर तुम खोजो जुग जुग जुग जुग ने तुमरी था पाई नहीं पावे जन नानके प्रवड ने नट महला चौथा मेरे मन कल कीर्त हर प्रवणे हर हर दया दया प्रतारी लग सतगुर हर जपने रहाओ हर तुम वड़ा गामे गोचर स्वामी सब ध्यावे हर रुड़ने जिनको तुमरे वड कटाक है ते गुरमुख हर सिमरणे इहो परपंच किया प्रभ स्वामी सब जग जीवन जुगने ज्यो सरलै सरल उठै बोलैरी मिल सरलै सरल समणे जो प्रभ की अस तुम ही जानो हम ना है हम नह जानी हर गहने हम बारक कौरित उसत तारो हम करो प्रभु सिमरणे तुम जल निद हर मान सरोवर जो सेवै सब फलने जन नानक हर हर हर हर वांचै हर देव कर कृपणे नट नारायण महला चौथा पड़ताल एक ओंकार सतगुर प्रसाद मेरे मन सेव सफल हर काल ले गुर पगरेन रवाल सब दर्द पंज दुख दाल हर हो नजर निहाल रहाओ हर का ग्रह हर आप सवार्यो हर रंग रंग महल बेअंत लाल लाल हर लाल हर अपनी कृपा करी आप गृह आयो हम हर की गुर की है बसीठी हम हर देखे पई निहाल निहाल निहाल निहाल हर आप ते की खबर गुर पाई मन तन आनंदो आनंद पए।

हर का मार गुर संत बतायो गुर चाल दिखाई हर चाल अंतर कपट चुकावो मेरे गुर सिखो ने कपट कमावो हर की हर काल निहाल निहाल निहाल ते गुर के सिख मेरे हर प्रभ पाए जिन हर प्रभ जानियो मेरा नाल जन नानक को मत हर प्रभ दीनी हर देख निकट हदूर निहाल निहाल निहाल निहाल राग नट नारायण महला चौथा एक ओंकार सतगुर प्रसाद राम क्या जाना क्या पावै राम हाओ क्या जाना क्या पावै मन प्यास भव दर्शावै राव सोई ज्ञानी सोई जन तेरा जस ऊपर रुचियावै कृपा करो जिस पुरख विधाते सुसदा सदा तो त्यावै कमन जो कम ज्ञान त्याना कमन गुनीरी जावै सोई जन सोई निज भगता जिस ऊपर रंग लावै साई मत साई बुद्ध स्यानप जित निमख न प्रभ बिसरावै संत संग लग ए सुख पायो हर गुण सद ही गावै देखियो चरज महामंगल रूप किछ आन नहीं दिसावै कौन नानक मोर जागुर लाहयो तह गर्भ जोन कह आवै नट नारायण महला पंजवां दूप दे कूंकार।

उपकर द्रौपदी दुष्टायानी हर हर लाज निवारे राव कर कृपा जाचक जन तेरे एक मांगो दान प्यारे सदगुर की नित श्रद्धा लागी मुख कर गुर मेल सवारे मोको हार गुर मेल सवारे साकत कर्म पानी ज्यो मतिया नित पानी झोल झुलारे मिल सत्संगत परम पद पाया कड़मा खन के गटकारे नित नित काया मजन किया नित मल मल देव सवारे मेरे सतगुर के मन बचन न पाए सब फोकट चार सिगारे मटक मटक चल सकी सहेली मेरे ठाकुर के गुण सारे गुरमुख सेवा मेरे प्रभ पाई मैं सतगुर लख लखारे नारी पुरख पुरख सब नारी सब एको पुरख मुरारे संत जना की रेन मन पाई मेरा हर जन हर निस्तारे ग्राम ग्राम सब नगर सब फिरियारे दे अंतर हर जन पारे सरदा सरदा उपाय मिलाए मुख हर गुर गुर निस्तारे पमन सूत सब निका करिया सतगुर शब्द विचारे निज कर जाए अमृत रस पिया बिन ना जगत निहारे तो गुण ईश वरण नहीं साको तुम मंदिर हमने कीरे नान कृपा करो गुर मेलो मैं रामन जप तुम मन तीरे नट महला चौथा मेरे मन पाज ठाकुर अगम अपारे हम पापी बहु निर्गुण्यारे कर कृपा गुर निस्तारे रहा साधु पुरख साध जन पाए एक बिनो करो गुर प्यारे राम नाम तन पूंजी सेवो सब तिसना भूख निवारे पचै पतंग मृग प्रेंग कुंचर मीन एक इंद्री पकर संघारे पंचभूत सबल है देही गुर सतगुर पाप निवारे शास्त्र वेद सोध सोध देखे मुन नारद वचन पुकारे राम नाम पढ़ो भगत पावो सत्संगत गुर निस्तारे प्रीतम प्रीत लगी प्रभ केरी जब सूरज कमल निहारे मेर सुमेर मोर बो नाचे जनून मैं कन कनहारे साकत कौ अमृत वो सिंचो सब डाल फूल विस्कारे जो जो निवै साकत नरसे थी छेड़ छेड़ कड्डै बिख खारे संतन संत साध मिल रही है गुण बोले पर उपकारे संत संत मिले मन बिकसै ज्यो जाल मिल कवल कमल सवारे लोभ लहर सब स्वान हलक है हलक्यो सब है बिगारे मेरे ठाकुर कह दीवान खबर होई गुर ज्ञान खड़ग लय मारे राख राख राख प्र मेरे मैं राखो कृपा तारे नानक मैं तारे वरना काई मैं सत

ओंकार सतनाम कर्ता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूर्त अजुनी सैभं गुर प्रसाद। अनेक जतन कर रहे अंत नहीं हर अंत नहीं पाया, हर गम अगम अगाध बोध या देश हर प्रभराया, रहाव काम क्रोध लोभ मोह नित चगर से चगराया, हम राग राग दीन तेरे हर शरण हर प्रभ्याया, शरणागति प्रपालते हर भगत वच्छल नाया, प्रहलाद जन हर नाग पकड़िया, हर राख लियो तराया, हर चेतरे मन महल पावन सब दुख भंजन राया, पौ जन्म मरण निवार ठाकुर हर गुरमति प्रभ पाया, हर पतत पावन नाम स्वामी पौ भगत भंजन गाया, हर हार हर उतारियो जन नानक नाम समाया, माली गौड़ा महला चौथा जप मन राम नाम सुखदाता, सत्संग मिल हर साध आया, गुरमुख ब्रह्म पछाता, रहा वड भागी गुर दसन पाया, गुर मिलिया हर प्रभ जाता, दुरमत मैल गई सब नीकर हर अमृत हर सरनाता, तन तन साध जिनी हर प्रभ पाया, तिन पूछो हर की बाता, पाए लगो नित करो जुदरिया, हर मेलो कर्म विधाता, लीलाट लिखे पाया गुर साधु गुर बचनी मन तन राता, हर प्रभाए मिले सुख पाया, सबके लिविक पाप गवाता, राम रसायन जन गुरमत पाया, तिनकी उत्तम बाता, तिनकी पंग पाई है बड़ भागी जन नानक चरण पराता, माली गौड़ा महला चौथा सब सिद्ध साधक मुन जना मन भावनी, हर त्यायो परम प्रो पार ब्रह्म स्वामी, हर लख गुरु लखायो रहाओ, हम नीच मध्यम कर्म किए नहीं चेत्यो, हर रायो हरियाण में लियो सतगुरु खिन बंद मुक्त करायो, प्राव मस्तके गुर लिखी प्राव मस्तके तुर लिखिया, गुरमति हर लिव लायो, पंच सब दरगह बाजिया, हर मिलियो मंगल गायो, पदत पावन नाम नर हर मंद भागिया नहीं पायो, ते गर्भ जो नी गालिए जो लून जलहै गलायो, मात देह हर प्रभ गम ठाकुर गुर चरण मन मै लायो, हर राम नाम मैं रहो लागो जन नानक नाम समायो, माली गौड़ा महला चौथा मेरा मन राम नाम रस लागा, कमल प्रगास पया गुर पाया, हर जप्यो भ्रम पौ भागा, रहाओ पाए पाए भगत लागो मेरा हीरा, मन सोयो गुरमत जागा, किल बेखीन पाए सत्याई हर उतारियो वड पागा, मन मुख रंग कसुंभ है कछुआ, जो कुसम चार दिन चागा, खिन मैं बिन सजाए प्रताप है जम टन जम, खिन मैं बिन सजाए प्रताप है डंड धर्म राय का लागा, सत्संग प्रीत साध अत गूढ़ी, जो रंग मजीठ बहु लागा, काया का परचीर बहु फारे हर रंग नल है सुभागा, हर चार्यो रंग मिलै गुर सोभा, हर रंग चलू लै रंगा, जन नानक तिनके चरण पखारै जो हर चरनी जन लगा, माली गौड़ा महला चौथा मेरे मन भज हर हर नाम गोपाला, मेरा मन तन लीन भया राम नाम है मत गुरमत राम रसाला, रहाओ गुरमत नाम त्याई है मेरे हर हर जन जपिया हर जम जाला, जिनके मस्तक लिखिया हर मिलिया हर बनमाला, जिनके मस्तक लिखिया हर मिलिया हर बनमाला, जिन हर नाम ते आया तिन चूके सर्ब जंजाला, तिन जम नेड़ न आवई गुर राखे हर रखवाला, हम बार किछु न जान हो हर मात पिता प्रतपाला, करमाया अगनित मेलते गुर राखे दीन दयाला, बहु मैले निर्मल होया सब किल बिघर जस जाला, मन आनंद भया गुर पाया जन नानक शब्द निहाला, माली गौड़ा महला चौथा मेरे मन हर भाज सब किल बिकाट, हर हर उतारियो गुर पूरा मेरा शीश की जय गुर वाट, रहाओ मेरे हर प्रभ की मैं बात सुनावै तिस मन देवो कटकाट, हर साजन मेलियो गुर पूरा है गुर बचन बिकानो हट हाट, मकर प्राग दान बो किया शरीर दियो अध काट, बिन हर नाम को मुक्त न पावै बो कंचन दी जय कट काट, हार कीरत गुरमत जस गायो मन उगरे कपट कपाट, सृष्टि फोर परम पौ भागा लज भानी मुटकी माट, काल जो गुर पूरा तिन पाया जिन तुर मस्तक लिखे लिलाट, जन नानक रस अमृत पिया सब लाथी भूख तिखाट, छका एक माली गौड़ा महला पंजवा,
एक ओंकार सतगुर प्रसाद रे मन टहल हर सुख सार अवर टहला झूठिया नित करे जम सिर मार रहा जिन्ना मस्तक लिखिया ते मिले संसार संसार भोजन तारिया हर संत पुरख अपार नित चरण सेवो साधके तज लो मोह बिकार सत जो दूजी आसरी रख आस एक निरंकार एक परम पूले सकता बिन गुरियां दे अंधार तुर होम ना सूया को न मेटन हार अगम रूप गोविंद का एक ना अनेक नाम अपार धन धन ते जन नानका जिन हर नामा उरतार माली गौड़ा मैला पंजवा राम नाम को नमस्कार जास जपत होवत उदार रहाओ जाके सिमरन मिटाय तंद जाके सिमरन छूटाय बंद जाके सिमरन मूर्ख चतुर जाके सिमरन कुलाय उदर जाकै सिमरन पौ दुख हरै जाकै सिमरन अपदा टरै जाकै सिमरन मुचित पाप जाकै सिमरन नहीं संताप जाकै सिमरन हृदय विकास जाकै सिमरन कबला दास जाकै सिमरन नित निदान जाकै सिमरन तरे निदान पतित पावन नाम हरि कोट भगत उदार करी हरदास दासा दीन सरन नानक माथा संत चरण माली गौड़ा महला पंजवा ऐसो सहाई हर को नाम सा संगत भज पूर्ण काम रहा बूढ़ को जैसे बेड़ी मिलत बूज दीपक मिलत तिलत जलत अग्नि मिलत नीर जैसे बारक मुख है खीर जैसे रण में सखा प्रात जैसे भूखे भोजन मात जैसे किरख बर समेग जैसे पालन सरन सिंह गरुड़ मुख नहीं सर्प त्रास सुआ पिंजर नहीं खाए बिलास जैसो आंडो हिरदो माहे ऐसो दानो चकी दराहे बहुत उपमा थोर कही हर अगम अगम अगाध तुही ऊच मूचो बहु अपार सिमरत नानक करे सार माली गौड़ा महला पंजवा इही हमारा सफल काज अपने दास को लियो निवाज रहाओ चरण संत माध मोर नैन दर्श देखो निस्कोर हस हमरे संत टहल प्राण मान धन संत बहल संत संग मेरे मन की प्रीत संत गुण बसै मेरे चीत संत आज्ञा मन मीठ मेरा कमल बिकसै संत ठीठ संत संग मेरा होए निवास संतन की

जा कह कर सगले समाहे जिसते व्यथा कोई नाहे जी जंत्र करे प्रतपाल सदा सदा सेवो कृपाल सदा धर्म जा कह दीबान बेमोताज नहीं किचकान सब कई करना अपने आप रे मन मेरे तुता को जाप साध संग

बांधव भगत वचल सदा सदा कृपाल रहाउ। आजंते मद तू है प्रभ बिना नाही कोए, पूरया सगल मंडल एक स्वामी सोए। कर्णहार जस नेत्र दर्शन रसनहार गुण गाओ, बलिहार जाए सदा नानक देहो अपना नाओ। माली गौड़ा बाणी भगत नाम देव जी की एक ओंकार सतगुर प्रसाद। तन तन ओ राम बेन बाजय मधुर मधुर धुन अनहद गाजय रहाओ। तन तन मेघा रोमावली तन तन कृष्ण ओडय कांबली। तन तन तू माता देव की जे गृह रमैया कवलापति। तन तन बन खंड बिंद्रा बना जय खेत श्री नारायणा। बीन बजावै गो धन चरै नामे का स्वामी आनंद करै। नामे का स्वामी आनंद करै मेरो बाप माधो तू धन की सो साम लियो बीठुलाए रहाओ। कर धरे चक्र बैकुंठ ते आए गज हस्ती के प्राण उधारी अले। दोह शासन की सभा द्रौपदी अंबर दे अंबर लेत कुबारी अले। गौतम ना रहेल्या तारी पावन के सकतारी अले। ऐसा अदम अजात नाम देओ तौ शरणागत आई अले। सबै कट राम बोले रामा बोले राम बिना को बोले रे रहाओ। एकल माटी कुंजर चीटी पाजन है बौना नारे। असावर जंगम पीठ पतम कट कट राम समाना रे। एकल चिंता राखे नंता और भजो सब आसा रे। प्रणव नामा पहे निकामा को ठाकुर को दासा रे। राग मारू महला पहला घर पहला चौप दे ओंकार सतनाम करता पुरख निरभउ निर्वैर अकाल मूर्त जूनी सह भंग प्रसाद। सलोक साजन तेरे चरण की होए रहा सद धूर। नानक शरण तुम्हारी आपे खो सदा हजूर। सबद पिछो राती सदड़ा नाम खसम काले। खेमे छतर सराय चे दिसन रात पीले। जिनी तेरा नाम ते आया तिन को सद मिले। बाबा मैं कर्महीन कूड़ियार नाम न पाया तेरा अंदा परम भूला मन मेरा रहा। साध कीते दुख पर फुड़े हे पूर्व लिखे माए। सुख थोड़े दुख अगले दुखे दुख बिहाय। विछुड़िया का क्या विछुड़े मिलिया का क्या मेल। साहेब सो सलाई है जिन कर देखिया खेल। संजोगी में लावड़ा इन तन कीते भोग। विजोगी मिल विछुड़े नानक पी संजोग। मारू महला पहला मिल मात पिता पिंड कमाया। तिन करता लेख लिखाया लिखदात जोत वड्याई। मिल माया सुरत गवाई। मूर्ख मन काहे कर सहमाणा उठ चलना खसमय पाणा। रहा ताई साध सह सुखोई कर छड़ने रहे न कोई। किछ खाजे किछ तर जाइए जे

ऐनस जागै नींद न सोवै सो जाना जस वेदन होवै प्रेम के कन लगे तन भीतर वैद की जाना कारी जीओ जिसनों साचा सिखती लाए गुरमुख बिरलै किसे बुझाए अमृत की सार सोई जाने जी अमृत का व्यापारी जीओ रहाओ फिर से तन प्रेम रचाए गुर के शब्द तथा चित लाए सहसे ती तन खरी सुहेली तृष्णा तिखा निवारी जीओ सहसा तोड़े परम चुकाए सहजे सिफती तनक चुड़ाए गुर के शब्द मेरा मन मारे सुंदर जोगा तारी जियो हो मैं जलिया मनो विसारे जम प्रभु वजय खड़ करारे आप कह कहिया नाम न मिले तू सौ जीड़े भारी जियो माया ममता पवै ख्याले जम पुर फासेगा जम जाली हित के बंधन तोड़ न सके ता जम करे कुआरी जियो ना हो करता ना मैं किया अमृत नाम सतगुर दिया जिसों दे सक्या चारा नानक नानक शरण तुम्हारी जियो मारू महला तीजा घर पहला एक ओंकार सतगुर प्रसाद जह बसा लै तह बसा स्वामी जह भिजहै तह जावा सब नगरी में एको राजा सब है पवित है थावा बाबा देव सच सच गावा जाते सहजे सहज सुमावा रहा बुरा पड़ा के छाप से जानिया ए सगल विकारा ए फरमाया कसम का हुआ वरता ए संसारा इंद्री ता सबल कहिया ता इंद्री किसे हुई आपे खील करे सब करता ऐसा पूजा कोई गुर प्रसादी एकले लागी धुप दात दे बनासी जो तिस्पाणा सो सत्कर्मा ने काटी जमती फांसी पंत नानक लेखा मांगे कमना जाका चूका माने बमान अभमाना तास तास धर्म राय जपत है पै सच्चे की सरना मारू महला तीजा आमन जाना ना थिया निज करवासा होए सच खजाना बसिया आपे जाना सोए ये मन हर जो चेत तू मनोता जिविकार गुर के सब त्याय तू सच लगी प्यार रहाओ ऐथे नाम भुलिया फिर हाथ किथाउ न पाए जोनी सब पुआइयन विष्ठा माए समाए वडभागी गुर पाया पूर्व लिखिया माए आन दिन सच्ची भगत कर सच्चा लय मिलाए आपे श्री सब साजियन आपे नदर के नानक नाम डियाइया जय पावत दे मारू महला पंतीजा पिछले गुण बख्साए जियो आप तू मार्ग पाए हर की चरनी लाग रहो विचों आप गुवाए मेरे मन गुरमुख नाम हर त्याए सदा हर चरनी लाग रहा एक मन एक पाए रहा नाम जात न पत है नाम थेओ न थाओ सबद भेद भ्रम कटिया गुरु नाम दिया समझाए एह मन लालच करदा फिरै लालच लागा जाए धंधा कूड़ बया पिया जम पुर चोटा खाए नानक सब के चापे आप है दूजा नाही कोए भगत खजाना बख्सियो न गुरमुखा सुख होए मारू महला तीजा सच रते से टोल लो से विरले संसार तिन मिलिया मुख उजला जपना मुरार बाबा साचा साहिब हृदय समाल सतगुर अपना पूछ देख लिहो सतगुर अपना पूछ देख लिहो वखर संभाल रहा एक सच्चा सब सेवनी तुर भाग मिलावा होए गुरमुख मिले सेना विछड़े पावै सच सोए एक भक्ति सार न जाननी मनमुख परम भुलाए उन्हां विच आवरदा करना किछु न जाए जिस नाल जोर न चलई खले कीचे अरदास नान गुरमुख नाम मन वसै तां सुन करे साबास मारू महला तीजा मारू ते शीतल करे मनुरो कंचन होए सो साचा सलाई ते जेवड़े वरना कोए मेरे मन आन दिन त्याय हर नाओ सतगुर कै बचन अरा तू आन दिन गुण गाओ रहाओ गुरमुख एको जानी है जा सतगुर दे बुझाए सो सतगुर सलाई है जी तू ऐसो जी पाए सतगुर छोड़ दूजा लगे क्या करने अगे जाए जा पुर बदे मारिए बहुती मिले सजाए प्रा मेरा प्रवे प्रभाव है ना तिस तिल न कमाए नानक तिस शरण आई भज पौ आपे बख्श मिलाए सात गुर छोड़ दू जय लगे क्या करने अगे जाए जम पुरब ते मारिए बहुती मिले सजाए मेरा प्रभ वे प्रभाव है ना तिस तिल न कमाए नानक तिस शरण आई भज पौ आपे बख्श मिलाए वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह सत

सत्पुरुष निर्भउ निर्वय अकाल मूर्त अजुनी सैगम गुर प्रसाद जप आदि सच जुगाद सच है भी सच नानक होशी सच सुचै सो

अशांत मूर्ख अंध घोर अशांत चोर राम अशांत अमर कर जाए अशांत गड़बड़ हत्या कमाए अशांत पापी पाप अशांत मूर यार अशांत मलेच माल पाए अशांत

सुहाग सलाम कमल सुरेंद्र भगत कमल कमल सिर कमल कमल सिर्फ

ਕਰਮਖੰਡ ਦਾ ਇਹੋ

पुरुष निर्भौ निर्वय अकाल मूर्त अजुनी शैवम गुर प्रसाद। जब आदि सच जुगाद सच है भी सच नानक उसी

अशांत मूर्ख अंध घोर अशांत चोर राम अशांत अमर कर जाए अशांत कालवड हत्या कमाए शांत पापी पाप अशांत मूरे आर गए फिराए अशांत मलेच माल पाप खाए अशांत निंदक से करे पा नानक नीच कहे क्या मारे न जामा के जो तुम पावे सही फलिका सुना सुना मत संत नाम संत नाम राम राम संत दो संत रहे सिर्फ।

आकाशवाणी ब्रह्म सत्स्वार्थम।

ਸਤਾ ਲਖ ਆਗਾ ਸਹਾਰਾ।

सोहन पंच भगवान सदरी कर्म सोवे काठ खाई उठे पाए नानक गए।

निर्भउ निर्वै अकाल मूरत अजुनी सैदम गुर प्रसाद। जब आदि सच जुगाद सच है भी सच नानक होशी

अशंख मूर्ख अंध घोर अशंख चोर राम अशंख अमर कर जाए अशंख कल वाय शंख पापी पाप अशंख मूर आर रहे शंख मलेच मल पाए अशंख निंदक करें।

अष्टकारण।

ਇੱਥੇ ਖੱਬ ਸੁਣੇ ਮੇਰਾ ਇੱਥੇ ਲੈ ਲੈ ਨੁੱਕਰ ਇੱਥੇ ਮੂਰਖ ਖਾਈ ਇੱਥੇ ਅੰਗੂਰ

ਜੋਰ ਸੁਪੈਨੇ ਜੋਰ ਜੋਰ ਨਾ ਮੰਗਣ ਦੇਣ।

सोहन पंच प्रवान नदरी कर्म सोवे काछ पाई उठे पाए नानक गया।

சொல்லி நானக்கு அந்த

निर्भौ निर्वै अकाल मूर्ति अजूनी सैगम गुर प्रसाद जप आदि सच जुगाद सच है भी सच।

मुख में

असंख मूर्ख अंध घोर असंख चोर राम असंख अमर कर जाए असंख कल वाय संख पापी पाप असंख मूर्या करे सुधाए संख मलेच मल पाए असंख निंद

ਵੀਰਿਆ ਵੇਖਾ ਤੀਰਥ ਤਪਦਿਆਂ ਡੰਡਾ ਦੇਖੋ ਪਾਵੇ ਸੁਣਿਆ ਸੁਣਿਆ।

ਸੁਣੀ ਨਾਨਕ ਅੰਤ ਨਾ ਅੰਤ।

ਸੁਣਿ ਸੈਭੰ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਜਪ ਆਦ ਸੱਚ ਜੁਗਾਦ ਸੱਚ ਹੈ ਵੀ ਸੱਚ ਨਾਨਕ ਹੋਸੀ।

गावे को जब पैर दिखे तू गावे को देखे आधा।

अशंख मूर्ख अंध घोर अशंख चोर राम अशंख अमर कर जाए अशंख कल वाय शंख पापी पाप अशंख कूड़े आल करे बुराए अशंख मलेश मल पाए अशंख निंदक करे पास नानक नीच कहे क्या मारे न जाना एक जो तुम पावे सही परिकार सदा सुना संख नाम संख नाम गम गम संख दो असंख कहें सिर्फ।

ਬ੍ਰਹਮਾ ਕਮਲ ਸੁਵੇਂਦਾ ਭਗਤ ਕਮਲ

ਦਾਸ ਤੇਰੀ ਦਾਸ ਬੰਦ ਖਲਾਸੀ ਭਾਣਾ

सोहन पंच परवान नदरी गर्म सोवे कच्छ पाई उठे पाए नानक पै।

कृता पुरुष निर्भो निर्वय अकाल मूर्त अजुनी सैगम गुर प्रसाद जप आदि सत्य जुगाद सत्य है भी सत्य नानक होशी।

कथना कभी नया तो कथ कथ कभी को

अंत मूर्ख अंत घोर संत चोर राम असंत अमर कर जाए असंत कल वाए संत पापी पाप असंत मूड़े आर करे संत मलेच मर पाए असंत निंदक।

आकाशवाणी ब्रह्मा सत्वांतरम कमल सुन।

समुद्र शाश्वता गिरी कुल नामनी अंत न सुनी कहन नाम अंत न करने देह नाम अंत न देखन सुन।

0: ਤੇਰੇ ਸੰਤ ਹੁੰਦ
1: ਕਿਤੀਆਂ ਪਾਣੀ ਕਿਤੇ ਪਾਸ ਰਹਿੰਦ
0: ਕਿਤੀਆਂ ਸੁੱਤੀ

थोड़ा सदा सोत कर्म खंड की पानी जो कर्म राम है।

कृता निर्भौ निर्वय अकाल मूर्त अजूनी सैदम गुर प्रसाद जप आदि सच जुगाद सच है भी सच नानक खुशी सच सोचे सोच न हो गई

0: को जब पैर दिशे गावे को देखे आज रहा
1: कतना कभी नया तो कत कत कभी

संत मूर्ख संत घोर संत चोर राम असंत अमर कर जाए असंत कल वाय संत पापी पाप असंत कूड़े आए संत मलेर मल पाए असंत निंदक।

ਅੰਤ ਨ ਸੁਣੀ ਕਹਿਣ ਨਾਲ, ਅੰਤ ਨ ਕਰਨਾ ਫੇਰ ਨਾਲ, ਅੰਤ ਨ ਵੇਖਣ ਸੁਣਨ।

Obrigado.

निर्भौ निर्वैर अकाल मूरत अजुनी सैगम गुर प्रसाद जप आदि सच जुगादि सच है भी सच नानक होशी।

संत मूर्ख अंध घोर संत चोर राम असंत अमर कर जाए असंत गड़बड़ हत्या कमाए संत पापी पाप असंत अनूरे आर प्रेत रहे संत मलेर मल पाप खाए असंत निंदक करे पाप नानक नीच कहे क्या मारे न जामा के जो तुम पावे सही फल कर सदा सदा मत संत नाम संत नाम राम राम संत दो संत कहें सिर पार हो।

はい。

समुद्र शास्त्रता अंत न सुनी कहना अंत न करना वेलना अंत न देखना।

ਇੱਥੇ ਸਭ ਸੁਪੈਂਦੇ ਕਾ ਇੱਥੇ ਲੈ ਲੈ ਮੁਕਰ

ਅੱਖਣ ਜੋਰ ਚ ਪੈਣਾ ਜੋ

सुनि सैकम गुर प्रसाद। जब आद सच जुगाद सच है भी सच नानक खुशी।

अंत मूर्ख अंत घोर असंख चोर राम असंख अमर कर जाए असंख गल वह संख पापी पाप असंख कूड़े आर करे फिर संख मलेच मल पाख है असंख निंदक करे पा नानक नीच कह क्या मारे न जाना के जो तुम पावे सही फली कर सदा खुला संत नाम संत नाम राम राम संत दो संत कहें सिर्फ

Jangan tinggal mau.

ਦਾਸ ਪਿੰਡ ਦਾ ਮੰਦ ਖਲਾਸੀ ਭਾਣਾ ਓ

ਗਾਉਣਾ ਪਾਉਣੀ ਅਮਨ ਮੋਹਨ ਸੁਰਗਾ ਮੱਚ ਪਿਆਲੇ ਗਾਉਣ ਰਤਨ ਪਾਏ

ਸੁਣੀ ਨਾਨਕ ਅੰਤ

ਸੁਰਾ ਸਦਾ ਸੁਰਤ ਕਰਮ।